ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್. शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है. शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया. विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई.
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं. उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है. इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ.
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है. ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था. उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा. वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है. शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा. पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी.

0: सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुँच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों में। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। ये समय होता है हमारे केंद्र से भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। सबसे पहले मातृभूमि को नमन करते हैं इस मातृ वंदना से।

शुभांगी काले के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आइए अब आनंद लेते हैं इस भजन का।

माधुरी खरे की आवाज में ये भजन अभी आपने सुना। आइए अब आनंद लेते हैं इस भजन का, जिसे स्वर दिया है भारती सिंह ने।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है चिंतन का। आज चिंतन का विषय है सत्य। आलेख है आचार्य भगवान देव का, वाचन स्वर है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: सत्य काम अपने नाम को पूर्ण रूप से सार्थक करता था। रोज के व्यवहार में भी सत्य के आदर्श को सामने रखकर वो व्यवहार किया करता था। चाहे सत्य के कारण मुझे मौत क्यों ना आ जाए, किंतु मैं सत्य के मार्ग से नहीं हटूंगा, वो प्रायः ये बात कहा करता था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे जीवन के सत्य को जानने की इच्छा प्रबल होती गई। सत्य की ओर ले जाने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में अपने शिक्षकों से अनेक प्रश्न पूछे थे उसने। यही प्रश्न उसे गौतम ऋषि के आश्रम की ओर ले गए। जब गौतम ऋषि से उसका और उसके पिता का नाम पूछा, तो इस युवक ने, जिसने कभी असत्य का पालन नहीं किया था, निर्भीकता से जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे सत्यकाम कहते हैं, लेकिन मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता, वो तो मेरी माँ ही जानती थी। सत्यकाम का ये सत्य जवाब सुनकर, उसकी ईमानदारी देखकर गौतम ऋषि ने चकित होकर खुशी से कहा, बेटे, क्या मैं तुम्हें पिता के समान नहीं लगता? आज से तुम मेरे बेटे हो, इसी आश्रम में रहो, भगवान की कृपा की वर्षा तुम पर होगी। सत्यकाम आश्रम में रहकर गौतम ऋषि की सेवा श्रद्धा प्रेम और लगन से करने लगा। हर दिन गौतम ऋषि के द्वारा ज्ञानामृत का पान करते हुए सत्यकाम के जीवन में एक नया जोश, नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति आ गई। एक दिन ऋषि ने सत्यकाम को बुलाकर कहा, अब तुम

0: किसी वन को ही अपना निवास स्थान बनाओ। मैं तुम्हें साथ में 400 गाय बैल दे रहा हूँ, इनकी रक्षा करो। जब तक इनकी संख्या 1000 तक नहीं बढ़ती, तब तक तुम वापस न आना। गुरुदेव की आज्ञा से सत्यकाम वन चला गया। वो गाय बैलों का पालन करने लगा। उसने सभी के साथ दोस्ती कर ली, बहने वाले पवन के साथ, पेड़ों से, पंछियों से, झरनों से, फूल पत्ते, नदी, चट्टान, चंद्र, सूर्य, तारे, सभी तो उसके मित्र बन गए। वसंत ऋतु में गुलाब के फूल उससे बोलने लगे। रात को चमकने वाले तारे अपनी रोशनी से उस पर कृपा की वर्षा करने लगे। सत्यकाम एकांत स्थान में अकेला रहता था। वन के एकांत वातावरण में वो शांति की आवाज़ को सुनना सीख गया। तपस्वी की तरह वह दिन बिताने लगा। वो एक ही प्रश्न बार बार पूछता था, मुझे बताओ ओ मेरे नौ द्वार वाले गांव में बसे हुए तुम कौन हो? कौन हो तुम जो मेरे नौ द्वार वाले गांव में बसे हुए हो? वह उदय अस्त होने वाले सूर्य से बोलने लगा। चमकने वाले तारों भरे आकाश की गहराई को एक नज़र से देखता। ज्वाला की तरह उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, तुम कहाँ गए हो? किस अनोखे राज्य में हो? चंद्रमा का क्षय, बढ़ने का चक्र देखा, ऋतु चक्र को जाना, गाय बैलों की संख्या 100-100 से बढ़ रही थी। सत्यकाम मानो शांति का पुत्र बना। सुंदरता, पवित्रता, विनम्रता, भगवान और उसके निर्मिति के प्रेम से वह बढ़ रहा था। पर उसका प्रश्न अनुत्तरित ही रहा, इस नौ दरवाजे के शहर में तुम कहाँ रहते हो? सत्यकाम जान गया कि इस प्रश्न का उत्तर बहस से नहीं मिलेगा। उसे तभी उत्तर मिलेगा जब वह भगवान में लीन होगा। इसलिए वह कष्ट और मानसिक चिंताओं से, विचारों से मुक्त हुआ। उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान तो प्रेम और सत्य का ही रूप है। सत्यकाम भगवान से कहता था, तुम्हारी जैसी इच्छा है मैं वैसे ही रहूँगा। भगवान के प्रेम सागर में सत्यकाम गोते लगाता था। वो केवल हे भगवान शब्द निकालता था। फिर अचानक एक दिन उन्होंने दीप्ति में देखा कि हर चीज़ में भगवान समाया है। सत्यकाम ने इस एकता को जानकर गायों की ओर देखा जो उसे शांति दे रही थी। उसके चारों ओर फूलों से सुंदर हंसी प्रस्फुटित थी। उसका मन विवेक विशाल हो गया और उसे लगा कि हम सब एक हैं। पंछी, जानवर, पेड़ पौधे, रेत, चट्टान, बहने वाली नदी, ये सब चमकने वाले तारे, सूर्य, चंद्र। सत्यकाम को प्रश्न का उत्तर मिला। उसने एक बहुत बड़ी खोज की थी। अब उसने गाय बैलों को गिनकर देखा, उनकी संख्या 1000 हो चुकी थी। खुश होकर वो अपने गुरु के आश्रम की ओर चला। गुरु ने उसके प्रसन्न चेहरे को देखा, जहाँ प्रेम विनय की चमक थी, आँखों में प्रभा थी। गुरु ने कहा, सत्यकाम तुम पर ईश्वर की कृपा हुई है, तुमने प्राचीन संतों के पुरातन सत्यों को जाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज चिंतन का विषय था सत्य। आलेख था आचार्य भगवान देव का, वाचन स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है श्री रामचरित मानस के संगीतमय प्रसारण का। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

श्री राम के राज्यकाल में अयोध्या की सुख संपदा तथा प्राकृतिक छटा को मात्र अनुपम की संज्ञा दे देना पर्याप्त नहीं है। पक्षीराज गरुड़ को राम नाम की महिमा सुनाते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जब से अवधपुरी में राजा रामचंद्र के प्रताप का सूर्य उदित हुआ है, तीनों लोकों से अज्ञान के अंधकार का नाश हो गया है।

मद, मान, मोह और ईर्ष्या का लोप, और सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक का उदय। यह है राम राज्य की विशेषता, जिसका आकर्षण सनकादि मुनि तक को खींचकर अयोध्या ले आता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था अनुराधा पोटवाल का। अब समय है कृषि सामिकी का। आज जानकारी का विषय है ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज कुशवाहा।
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि विदित है कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस समय पे हमारे जो फलदार वृक्ष हैं जिनके बगीचे लगे हुए हैं उनका प्रबंधन बहुत ही जरूरी हो जाता है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए उनकी कटाई छटाई रखरखाव थाला बनाना खाद देना, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि अभी जो फलदार वृक्ष जिन पे फल लग रहे हैं जैसे कि आम है उसको हफ्ते में एक बार पानी जरूर देना है। थाला कम से कम 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और थाले की जो आसपास की मिट्टी है बहुत ही अच्छी गुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब भुरभुरी हो। और यहाँ एनपीके अगर है तो हम इसको 50 ग्राम 100 ग्राम तक, अगर 5 साल से ऊपर का है तो 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। लेकिन

0: पानी या नमी वहाँ ज़रूर होनी चाहिए ताकि उसकी जड़ें जले नहीं। अगर आपने पानी नहीं दिया, सिर्फ खाद डाल दी या उर्वरक डाल दिया, तो उसमें जलन की समस्या हो सकती है। तो हमको नमी वहाँ बनाए रखनी है ताकि हमारे जो फलों का साइज़ है, आकार है, वो वृद्धि कर सके। इसके अलावा सभी जो भी अन्य फलदार वृक्ष हैं, उनमें भी नमी बनाए रखने के लिए हमको समय समय पर पानी देना है। और इसकी जो कटाई की बात है, यानी जिसको प्रूनिंग कहते हैं, तो प्रूनिंग हमको अगर जिनमें फल आ रहे हैं, फल लगने के बाद हमको उनकी लाइट प्रूनिंग करनी है। ज़्यादा घनी प्रूनिंग नहीं करनी है। लाइट प्रूनिंग, कई पेड़ ऐसे हैं जो नई शाखाओं पर ही वृक्ष अगले वर्ष आएंगे, जैसे कि आम है, जैसे कि अमरूद है, जैसे कि आपका अनार है, जामुन है, बेर है, बेल है, तो इन सभी पर, और सहजना, ये सभी पर हमको नए फल लेने के लिए प्रूनिंग करनी होती है। तो जब इन पर फल खत्म हो जाए, उसके बाद लाइट प्रूनिंग करें। जितनी भी शाखाएं उस पर लगी हैं, उससे 50% से कम ही प्रूनिंग करनी होती है। लेकिन जैसे बेर है या सहजना है, तो इसको प्रूनिंग करने के लिए हमको 4 मीटर, अगर पेड़ हमारा है तो 4 मीटर से इसको फ्लैश आउट कर देते हैं, मतलब 4 मीटर के बाद हम इसको पूरा काट देते हैं तने से, जिससे कि नई शाखाएं या किल्ले जिसको बोलते हैं वो निकलते हैं और उस पर हमें नए फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास अंगूर है, अंगूर में भी 50% तक हमको अंगूर की कटाई छटाई करनी होती है और वो अगले वर्ष वहाँ पर उसमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इससे लाभ भी बहुत सारे हैं, जो सड़े गले फल लगे हैं वो भी हट जाते हैं, कोई बीमारी किसी शाखा पे आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब भी दूर हो जाता है। और इन पेड़ों का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि ये नई शाखाओं पे भी आते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो शाखाएं तो वृद्धि करेंगी, लेकिन उतनी नहीं करेंगी। अगर कम रहेंगी तो फिर कम फल उस पे हम अर्जन कर पाएंगे। इसलिए थालों का और इसका प्रूनिंग जरूरी है। इसके अलावा जो किसान भाई नया वृक्षारोपण अपना खरीफ सीजन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अभी से पेड़ों के हिसाब से कम 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1, मतलब एक गहरा, एक चौड़ा, एक ऊंचा गड्ढा हमको करना है। निश्चित दूरी पर रखें। ये थोड़ा सा बदलता है कि कौन सा वृक्ष है, कहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो भी आपने सुनिश्चित किया है कि इस बार हम इस पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे, तो उस स्थान का अगर आपने चयन कर लिया है, तो वहाँ पर आप अपना गड्ढा कर लें और उसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको अपन को फेंकना नहीं है, उस गड्ढे के बाजू में ही रखना है। और वृक्षारोपण का इंतजार, जब हम बारिश का समय आएगा तो हम वृक्षारोपण उसमें करेंगे। लेकिन वृक्षारोपण करने के पहले एक बार जब पूरा थाला पानी से, बारिश के पानी से भर जाए और वो नीचे की तरफ परकुलेट हो जाए, तब हमको उसमें मिक्सचर बना के, वही मिट्टी लेकर, उसमें गोबर की पची हुई खाद लेकर, कुछ फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड मिलाते हुए तब हमको वृक्षारोपण उसमें करना है। क्योंकि ऐसा ना करने पर वो जब कभी कभी पहले कर देते हैं, बारिश आने वाली है तो मिक्सचर बनाया, उस गड्ढे में रखा और हमने उसको वृक्षारोपित कर दिया, लेकिन जब उसमें जो हीट है, गर्मी है, निकलती है, तो उस वजह से उसकी जड़ों को सुखा देती है, उसमें भी बल्कि रूट हेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, तो उनको सुखा देती है। और हम जब जड़ निकालते हैं तो हमें लगता है कि जड़ें तो साबुत हैं लेकिन हमारा पेड़ सूख गया है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको वृक्षारोपण करना है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामिकी। आज जानकारी का विषय था ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीरज कुशवाहा। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है कार्यक्रम विवरण जानने का। जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 समय रहेगा लघु वार्ता का। लघु वार्ता में आज हम आपसे बात करेंगे सांप्रदायिक सद्भाव पर। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 पर आज हम आपको सुनवाएंगे काव्य पाठ के तहत गजलें। 7:30 समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आप सुनेंगे 7:45 पर। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे आकाशवाणी।

के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 9:00 सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। 9:30 पर पुनः हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे 10:00। 10:05 समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

दिन में एक बजे महिला कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे रीवा केंद्र की प्रस्तुति। दिन में 1:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत के तहत आप सुनेंगे रीवा केंद्र की प्रस्तुति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। दिन में 2:30 पर भी आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम युववाणी के तहत आप सुनेंगे रीवा केंद्र की प्रस्तुति शाम 5 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सभी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्रीरूपेण शपथग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथग्रहण समारोहः आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, भाजपाध्यक्षः नितिन नवीनः, केन्द्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसी इति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णं उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितञ्चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

0: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है लघु वार्ता का। लघु वार्ता में आज हम आपसे बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव पर। श्रोताओं, सांप्रदायिक सद्भाव का तात्पर्य आपसी प्रेम और भाईचारे का भाव है। एक देश में रहने वाले सभी नागरिक आपस में भाई भाई हैं। धर्म, जाति, मजहब की संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलकर देश के हित और चिंतन की बात सोचते हुए जब हम सब मिलकर देश के विकास और तरक्की में सहयोग करते हैं, तभी सही मायने में हम सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण निर्मित करते हैं। एक देश तभी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है जब वहां पर आंतरिक शांति और सद्भाव का वातावरण हो। और देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। हम जानते हैं कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म एवं जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की नजर में सभी एक समान हैं और सभी के साथ सदैव समान व्यवहार किया जाता है। श्रोताओं, इस बात को हमें अपनी सोच में भी उतारना है और आपस में मिलजुल कर रहना है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इस धरती की प्रत्येक चीज को उसने उपहार स्वरूप सभी को प्रदान किया है और हम सभी समान रूप से प्रकृति की प्रत्येक चीज का उपयोग करते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो या मिट्टी। ईश्वर की बनाई प्रत्येक चीज पर सभी का समान हक और अधिकार है। जब ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेद नहीं किया, तो हम भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों जाति और मजहब की बात करते हैं? ईश्वर ने सिर्फ मानव की रचना की है, उसे धर्म, जाति और मजहब में बांटा है हमने, और ये सिर्फ हमारी संकीर्ण विचारधारा है। और इसी भावना के चलते कभी कभी हम मैं की भावना से प्रेरित होकर ईर्ष्या, द्वेष और नफरत

की बात करने लगते हैं जो कि सरासर गलत है। दुनिया का कोई भी काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। उसे कभी न कभी अपने परिवार के अलावा अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों की जरूरत अवश्य पड़ती है। इसलिए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति से दोस्ताना रिश्ते रखना चाहिए। हम ये नहीं जानते कि कब कैसा वक्त आ जाए और हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। कोई भी मुश्किल सभी के सहयोग से ही आसान होती है। इसलिए यदि किसी पर भी मुसीबत आती है या किसी को भी मदद की जरूरत पड़ती है तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, तुरंत आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। यही मानव धर्म है। अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा भी परोपकार हम करते हैं, हम की भावना से कार्य करते हैं और सारे भेदभाव भुलाकर दूसरों को खुशियां बांटते हैं तो हमारा ये जीवन सार्थक होगा और हमारे दिल को शांति और सुकून का एहसास होगा। अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। आज हम आपसे बात कर रहे थे सांप्रदायिक सद्भाव पर। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी नेशनल लोक अदालत। बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्यप्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनी विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनी विद्यालय भी देखे और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
0: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, ANM और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, 12 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50 सीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनी विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तरीय विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमनाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तीन बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही दो टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं काव्य पाठ। काव्य पाठ में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गजलें। कलाकार हैं जनाब मोहम्मद याकूब। तो आइए सुनते हैं काव्य पाठ के तहत गजलें।
2: देश के शहीदों के लिए चार मिसरे अर्ध हैं। हौसले होशमंद रखते हैं, हौसले होशमंद रखते हैं, खूबसूरत पसंद रखते हैं, चूम लेते हैं दार को चढ़कर, चूम लेते हैं दार को चढ़कर, सर को अपने बुलंद रखते हैं, सर को अपने बुलंद रखते हैं। और गजल का मतलब देखें कि परचम सदा अमन का कायम निशान रहेगा, परचम सदा अमन का कायम निशान रहेगा, यूं चांद सा चमकता हिंदुस्तान रहेगा, यूं चांद सा चमकता हिंदुस्तान रहेगा। हम हिंद के हैं वासी, आज़ाद हैं चमन में, हम हिंद के हैं वासी, आज़ाद हैं चमन में, जब तक जमी रहेगी ये आसमां रहेगा, जब तक जमी रहेगी आसमां रहेगा। हिल मिल के हम रहेंगे नफ़रत नहीं करेंगे, हिल मिल के हम रहेंगे नफ़रत नहीं करेंगे, पैगाम ये हमारा बिरदे ज़ुबान रहेगा, पैगाम ये हमारा बिरदे ज़ुबान रहेगा। हम मादरे वतन पर सो जान से फिदा हैं, हम मादरे वतन पर सो जान से फिदा हैं, ये हौसला हमारा हरदम जवान रहेगा, ये हौसला हमारा हरदम जवान रहेगा। दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर दो साबिर, दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर दो साबिर, महफूज हर बला से ये गुलस्तान रहेगा, महफूज हर बला से ये गुलस्तान रहेगा। और दूसरी गजल का मतलब देखिएगा, देश पर जान लुटाने की कसम खाई है, देश पर जान लुटाने की कसम खाई है, कर्ज माटी का चुकाने की कसम खाई है, कर्ज माटी का चुकाने की कसम खाई है। एक मतलब और देखिएगा कि हक़ की आवाज़ उठाने की कसम खाई है, हक़ की आवाज़ उठाने की कसम खाई है, हमने बातिल को मिटाने की कसम खाई है, हमने बातिल को मिटाने की कसम खाई है, सबको इंसाफ दिलाने की कसम खाई है, सबको इंसाफ दिलाने की कसम खाई है, जुल्म धरती से मिटाने की कसम खाई है, जुल्म धरती से मिटाने की कसम खाई है। सारे आलम में शराफत को बचाने के लिए, सारे आलम में शराफत को बचाने के लिए, ईंट से ईंट बजाने की कसम खाई है, ईंट से ईंट बजाने की कसम खाई है। हमने मगरूर हवाओं के मुकाबिल जाकर, हमने मगरूर हवाओं के मुकाबिल जाकर, प्यार की शम्मा जलाने की कसम खाई है, प्यार की शम्मा जलाने की कसम खाई है। मिसले फिरौन जो करता है खुदाई दावा, मिसले फिरौन जो करता है खुदाई दावा, उसको दरिया में डुबाने की कसम खाई है, उसको दरिया में डुबाने की कसम खाई है। और गजल का मतलब देखें, इस तरह गरीबों के अरमान निकलते हैं, इस तरह गरीबों के अरमान निकलते हैं, सूखी हुई रोटी को पानी से निगलते हैं, सूखी हुई रोटी को पानी से निगलते हैं। उस वक्त पे होता है एहसास गरीबी का, उस वक्त पे होता है एहसास गरीबी का, मेले में खिलौनों को जब बच्चे मचलते हैं, मेले में खिलौनों को जब बच्चे मचलते हैं। पत्थर से मुरव्वत की उम्मीद नहीं रखना, पत्थर से मुरव्वत की उम्मीद नहीं रखना, पत्थर भी कभी अपनी तासीर बदलते हैं, पत्थर भी कभी अपनी तासीर बदलते हैं। गर दिल की हरारत को महसूस किया जाए, गर दिल की हरारत को महसूस किया जाए, एहसास की भट्टी में जज्बात पिघलते हैं, एहसास की भट्टी में जज्बात पिघलते हैं, ये सौखे सुखन इतना आसान नहीं साबिर, ये सौखे सुखन इतना आसान नहीं साबिर, पी पी के लहू दिल का अशआर निकलते हैं, पी पी के लहू दिल का अशआर निकलते हैं। और ये गज़ल का मतलब पेश है कि हर एक गम भुलाने को जी चाहता

0: एक गजल का मतलब और दिखेगा। किसी की आमद पे अपनी पलकें बिछा के रखना कमाल ये है, किसी की आमद पे अपनी पलकें बिछा के रखना कमाल ये है, दिलों के अंदर चराग उल्फत जला के रखना कमाल ये है, दिलों के अंदर चराग उल्फत जला के रखना कमाल ये है, जुनून की हालत में खुद पे काबू जमा के रखना कमाल ये है, जुनून की हालत में खुद पे काबू जमा के रखना कमाल ये है, सुकून दिल को निगाहे बद से बचा के रखना कमाल ये है, सुकून दिल को निगाहे बद से बचा के रखना कमाल ये है, ना तलख लहजे में बात करना कभी ना उनको उदास रखना, ना तलख लहजे में बात करना कभी ना उनको उदास रखना, बड़ों के आगे अदब से आंखें झुका के रखना कमाल ये है, बड़ों के आगे अदब से आंखें झुका के रखना कमाल ये है, किसी से हरगिज ना आस रखना खुदा की मर्जी तलाश करना, किसी के आगे ना आस रखना खुदा की मर्जी तलाश करना, जहान फ़ानी में फ़िक्र उकवा जमा के रखना कमाल ये है, हमेशा रखना यकीन खुदा पर मदद तुम्हारी वही करेगा, हमेशा रखना यकीन खुदा पर मदद तुम्हारी वही करेगा, ज़माने वालों से अपनी हाजत छुपा के रखना कमाल ये है, ज़माने वालों से अपनी हाजत छुपा के रखना कमाल ये है।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ के तहत गजलें, कलाकार थे जनाब मोहम्मद याकूब। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और ये है कार्यक्रम का पहला गीत।

मेरे सनम, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत ओपी नैयर का। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत। संगीत ओपी नैयर का है, फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में चाइना टाउन फिल्म से लिया गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत रवि का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में चाइना टाउन फिल्म से लिया गीत। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

श्रोताओं नमस्कार। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। श्रोताओं, इस समय मई का महीना चल रहा है और हमेशा मई का महीना काफी गर्म रहता है, लेकिन इस बार मौसम में लगातार बदलाव आ रहे हैं। कभी तेज गर्मी, कभी धूल भरी आंधी, अचानक हल्की बारिश और एकदम चलने लगी ठंडी हवाएं। मौसम को पल पल में बदल रही हैं, लेकिन मौसम तो गर्मी का ही है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ये पल पल बदलता मौसम सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। हम मौसम के अनुरूप ही अपना खान पान करते हैं और सबसे ज्यादा बीमारियां खान पान से ही होती हैं। इसलिए कहीं से भी यदि आप आते हैं तो एकदम से ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम या अन्य ठंडे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकदम से ठंडी हवा में कूलर या एसी के सामने नहीं बैठना चाहिए। हमेशा हल्का, सुपाच्य और ताज़ा खाना खाना चाहिए। बाजार में आने वाले ताज़े और रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, साथ ही ताजगी भी देते हैं। इस मौसम में ज्यादा तले भुने, तीखे, मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज रखना चाहिए और पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर खुली हवा में टहलना चाहिए और हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। इस मौसम में हमेशा सूती, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये शरीर से निकलने वाले पसीने को सोख लेते हैं और शरीर को आराम

प्रदान करते हैं। श्रोताओं, इन सभी बातों के साथ साथ आप अपनी दिनचर्या को संयमित और संतुलित रखें और हमेशा खुश और प्रसन्नचित रहें। ये तो बात हुई सेहत की, और अब आपको देते हैं कुछ जानकारियां। शासकीय सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार 2026 के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एक और जानकारी सुनिए। अब बिजली उपभोक्ता आसानी से अपने विद्युत कनेक्शन का टैरिफ बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली कंपनी के दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन टैरिफ परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध करा दिया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। खाद्य विभाग ने राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एक मुश्त देने के निर्देश दिए हैं। मई और जून का राशन एक साथ देने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई है। पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। सभी राशन हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि वे मई और जून की राशन सामग्री उचित मूल्य की दुकान से 15 मई से पहले प्राप्त कर लें। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम परीक्षा के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथियों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है। छात्र ऑनलाइन आवेदन करें। अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मदरसा प्रभारी से ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन कराएं। निर्धारित तिथियों में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजें। तमाम सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाएं। कुछ और जानकारियां हम आपको देंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं।

ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना और अब आपको देते हैं और जानकारियाँ। एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर श्रीमंत माधव राव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पर भव्य खेल आयोजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एथलेटिक्स, जूडो, मलखंब, शूटिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी सहित विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, प्रशिक्षक, अभिभावक और खेल प्रेमी उपस्थित रहे, जिससे पूरा स्टेडियम खेल ऊर्जा और उत्साह से भर गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को आधुनिक खेल उपकरणों और नई तकनीकों के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में खेलों में तकनीक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खिलाड़ियों को फिटनेस, तकनीकी दक्षता और मानसिक मजबूती के महत्व के बारे में भी समझाया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि यदि खिलाड़ी आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अनुशासन के साथ अभ्यास करें तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस अवसर पर वक्ताओं ने विश्व स्तर पर एथलेटिक्स के बढ़ते प्रभाव और खेलों में उपलब्ध अवसरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता को नहीं बढ़ाते बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक और सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। एक और जानकारी हम आपको देते हैं। प्रदेश भर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो चुका है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करार खेड़ा में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की गतिविधियां जारी हैं। स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के तहत ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। इसमें विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। और अब आपको देते हैं मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी। आज दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 47% रहने की संभावना है। इन सभी जानकारियों के साथ सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर एक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
4: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
4: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
2: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
7: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
9: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपये गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है।
10: नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, आशा भोसले, किशोर कुमार, उषा रेगे और अंतरा चौधरी की आवाज़ में। फिल्म है कालिया। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, रिश्का और रॉबिन ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में बाजीगर फिल्म से लिया गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेवफा से बफा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है अर्षा भोसले ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर बेवफा से बफा फिल्म से लिया ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, बबला और साथियों की आवाज में। ये गीत हमने लिया है फिल्म चांदनी से। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं लाल माता, सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में दर्द फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव किशोरी बोस एलपी रोहित लल्लू राम छोटू डुंडुन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। आइए सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत फिल्म दर्द से।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में दर्द फिल्म से लिया ये गीत। इसी के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विनोद कुमार सेन और साथी और ओम प्रकाश उदयनिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश उदयनिया के गाए इस भजन से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश उदेनिया के गाए लोकगीत। आइए आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए अब सुनते हैं विनोद कुमार सेन और साथियों का गाया ये लोकगीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत, साथ ही ओम प्रकाश उदेनिया के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। ये गीत हमने लिया है फिल्म कर्मा से। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। आइए सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत फिल्म कर्मा से।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में शक्ति फिल्म से लिया गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत राहुल देव बर्मन का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बिजौरा गौर छामर जिला सागर मध्य प्रदेश से गोलू अहिरवार अजय रोहित दिनेश और इनके मम्मी पापा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव किशोरी बोस एल पी रोहित लल्लू राम पूरन छोटू डुंडुन और इनके परिवार के सभी सदस्य।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है फिल्म प्रेम पुजारी से। इस गीत को सुनना चाहते हैं सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म अपराधी से, आवाजें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क मध्य प्रदेश शाजापुर से एम राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, शशिकांत, रिया, रीत, स्वीटी, सागर, रितिका, ऋचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अपराधी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने।

आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में बॉर्डर फिल्म चलिया गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण खर्चे।

बॉर्डर फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारम्भ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपए प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के IPS अधिकारी शियाज के एम ने जिले के SP का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौला में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है। इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। NTPC विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में NTPC विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL ने वृहद वृक्षारोपण के लिए MPRVVN के साथ MOU किया है। NCL ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है जिससे उन्हें अब हर साल 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को PM स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी PM स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्यकुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा परवीन की गाई गजलें। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गजल से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं सीमा परवीन से ये गजल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सीमा परवीन की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गीत हमने लिया है फिल्म इज्जत से।

इज्जत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में बेटी बेटे फिल्म से लिया ये गीत।

बेटी बेटे अभी आपने सुना इस फिल्म से लिया गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में बॉबी फिल्म से लिया ये गीत।

बॉबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था शैलेंद्र सिंह ने। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत जिसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। गीत मजरू का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं नसीब फिल्म का गीत जिसे गाया है डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे नसीब फिल्म से लिया गीत, जिसे गाया था डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों ने। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: कांधा आगे किया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाया है,
1: जी सर।
0: आपकी तन्हाई को दूर करने में,
1: हाँ
0: आपके एकाकीपन को बांटने में आकाशवाणी आपकी साथी बनी है
1: जी सर।
0: जी। चलिए तो इसी खुशी के मौके पर एक
1: नमस्ते।
0: गीत आपके नाम करते हैं, आप इस गीत को सुनिए और खो जाइए आकाशवाणी के इन खूबसूरत पलों में।
1: जी
0: नमस्कार।
1: सर, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: सर। आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ
0: हाँ जी राजू जी, आगरा से
1: जी।
0: आपने
1: सर
0: फोन लगाया है। क्या हाल चाल है इन दिनों आगरे के?
1: सर आगरा में हालचाल ठीक है। मौसम आजकल बहुत सुहाना हो रखा है। बारिश सुबह भी यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और पिछले कहा जाए तो लगभग अप्रैल महीना पूरा ही बारिश और आंधी में गया। मई का महीना भी लगभग ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि
0: अच्छा
1: आज
0: अच्छा
1: 8 मई हो चुकी है, तब भी मौसम एकदम खुशगवार है।
0: अच्छा जी, तो मोहब्बत की नगरी में इन दिनों माहौल और फिजाएं बहुत ही खुशनुमा हैं।
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल।
0: आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं कि रेडियो ने, आकाशवाणी ने आपके जीवन को कितना समृद्ध किया है। कौन सी ऐसी सीख है जो आपने रेडियो से सीखी, आकाशवाणी से सीखी है? कोई ऐसी
1: रेडियो से
0: बात या
1: सबसे बड़ी
0: याद?
1: चीज तो हमने ये सीखी कि हमें दूर दूर के श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि हमारा एक ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है जो हमें जोड़ता भी है, रेडियो से भी जोड़ता है और श्रोताओं से भी जोड़ता है, क्योंकि हम कई सारे केंद्रों पे इन्वॉल्व रहते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन वाले जो स्टेशन है आकाशवाणी के। और ये जो ब्रज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है, ये कई सारे केंद्रों से जुड़ा रहता है, और इसका यही काम है कि श्रोताओं को रेडियो से जोड़ना, और रेडियो का जो काम है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये रेडियो का सिद्धांत रहा है शुरू से आकाशवाणी का। तो रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है, साथ ही कई सारे ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो हमारी जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और खास करके हम तो संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हमें संगीत के कार्यक्रम, चाहे वो सुगम संगीत हो, प्रेम संगीत हो, लोक संगीत हो, या फिर जो भी संगीत से जुड़े कार्यक्रम हैं, बहुत पसंद आते हैं, और हम उन कार्यक्रमों को बड़े ही चाव से सुनते भी हैं सर।
0: आपकी बातों को अगर हम सार संक्षेप में कहें तो आकाशवाणी ने अपने लोकगीतों को, लोक रागों को, लोक व्यक्तित्वों को अपने इन कार्यक्रमों में जगह देकर हमारी संस्कृति को बचाने में अहम दो योगदान दिया है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो पुरानी परंपरागत संस्कृति है उसको जीवंत रखने में आकाशवाणी की अहम भूमिका है, चाहे वो होली गीत हों, चाहे वो नवरात्रियों में माता रानी के गीत हों, चाहे दीपावली

0: को, यानी जितने भी हमारे चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, हर तरह के गीत, हर तरह के संगीत से और हर तरह के जो योग्य कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है हमारी देशभक्ति के प्रति, हमारी परंपरागत पौराणिक संस्कृति के प्रति, वो सभी कार्यक्रम प्रसारित करके आकाशवाणी ने अपनी एक अहम भूमिका अदा की है।
1: चलिए, आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए आगे हम एक गीत आपकी नज़र करते हैं। आपने हमें
0: धन्यवाद।
1: फ़ोन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक
1: नमस्कार।
0: यू सर। नमस्कार।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक

0: हाँ जी नमस्कार। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: हारून साहब कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आज हमारी बातों का जो विषय है वो है बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम में, रेडियो ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, क्या दिया है रेडियो ने आपको, आकाशवाणी ने क्या दिया है आपके जीवन में, ऐसा कौन सा बदलाव, ऐसा कौन सा योगदान किया है जिसे आप
1: रेडियो
0: रेखांकित
1: तो
0: करना चाहेंगे?
1: रेडियो में तो सब कुछ दिया है, ज्ञान वर्ग दिया है, सब कुछ दिया है रेडियो ने। तो जी, रेडियो तो जीवन साथी है,
0: अरे वाह।
1: उससे रेडियो तो सबसे जीवन साथी है, कम से कम 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। उससे सब कुछ ज्ञान भी मिलता है, उससे समाचार मिलने को मिलते हैं, खबरें मिलते हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, क्रिकेट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, हर चीज मिलती है उससे ज्ञान मत।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 25 सालों में ऐसा कौन सा बदलाव खास तौर पर आपको रेडियो पर सुनाई दिया जिसको आप अभी हमारे साथ में साझा जरूर करना चाहेंगे?
1: जी देखो, परिवर्तन तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अधिकतर ध्यान जानकारी ध्यान तो खैर नहीं है, लेकिन पहले लाइव चलता था, फौरन प्रोग्राम सुने, और ये अब रिकॉर्डिंग हो गई, होना चालू हो गया है अब।
0: चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात को पकड़ लिया है कि ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्डेड जा रहा है, इससे पहले ये लाइव जाया करता
1: जी
0: था। आपने लगातार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति इसी तरह बनाई हुई हुई होगी। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। एक गीत अभी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: अंगत फरियाद जिला हमीरपुर तहसील रात के आम कहता से बोल रहे।
1: कौन बोल रहा है जी?
0: अंगत फरियाद
1: अंगद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जिला हमीरपुर तहसील रात ग्राम कहता से।
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, बैठे हैं।
1: अच्छा, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस
0: हाँ
1: कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, किस
0: हाँ
1: तरह आकाशवाणी ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में जोड़ा है जो आप हमसे इस वक्त बताना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहेंगे?
0: नहीं, अभी नहीं।
1: अच्छा, रेडियो से जुड़ी हुई कोई बात अभी आपको फिलहाल याद नहीं आ रही है?
0: हाँ, नहीं आ रही है।
1: तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते आए हैं हमारे?
0: हम कुल कार्यक्रम सुनते हैं।
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
0: हाँ, सभी खुल सुनते हैं हम। हमारे पास रेडियो भी है। हाँ,
1: अच्छा जी, तो रेडियो पर कौन सा स्टेशन आप सुनते हैं, कौन सा केंद्र सुनते हैं?
0: भोपाल।
1: भोपाल सुनते हैं।
0: हाँ,
1: तो भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले किसी खास कार्यक्रम को आप याद करना चाहेंगे?
0: भोपाल सरकार के हम भी याद करना चाहते हो बात। हेलो मैम।
1: हाँ जी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं धीरज सिंह परियार बोल रहा हूँ, ग्राम कैथा तहसीलदार जिला हमीरपुर से।
1: तो बताइए, आज ये कौन सा ऐसा वाकिया है, कौन सी ऐसी याद है जो आप रेडियो के साथ में साझा करना चाहेंगे आकाशवाणी के
0: रेडियो
1: जुड़ी हुई? कोई ऐसी बात जिसको आकाशवाणी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया हो, जीवन को समृद्ध बनाया हो?
2: आकाशवाणी भोपाल तो बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश करती है। और
1: चलिए, तो आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। आइए हम और आप मिलकर ये गीत सुनते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी। जी फोन करें कि सुने का जी क्लियर कॉल
0: नहीं,
1: के लिए हमने फोन
0: आज
1: लगाया है।
0: आज जो है वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं 90 सालों तक का जो एक सफ़र किया है,
1: हाँ
0: 90 वर्षों की एक जो यात्रा है आकाशवाणी की। इस यात्रा में आप जैसे श्रोता हमारे सहभागी बने हैं, हमारे साथी बने हैं। तो आकाशवाणी ने आपको क्या दिया है इन 90 वर्षों में, या जब से आपने आकाशवाणी सुनना शुरू किया है तब से क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में, क्या ऐसा
1: बहुत
0: योगदान रहा है
1: परिवर्तन
0: रेडियो
1: आया
0: का?
1: है सर। मैं
0: जी
1: हरिशंकर खेमरिया कोलारा जिला शिवपुरी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: बहुत परिवर्तन आया है और रेडियो सुनने से मेरे सारे सुनता रहता हूँ। और मैं कल अभी बहुत दिन से ये फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा था फोन।
0: जुड़ा है, फोन कॉल शामिल किया जा रहा है। तो बताइए ना, रेडियो से क्या ऐसा आपको सीखने को मिला है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। सारी गलत बातें छोड़ के और अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे गीत सुने, अच्छा मन रहे, अच्छा मनोरंजन हो और परिवार में सुख शांति रहे।
0: तो ये रेडियो ने आपको ये विचार दिए हैं, ये रेडियो की ये आपको देन है कि आप अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा
1: हाँ
0: बोलना
1: अच्छा
0: चाहते
1: सुनना
0: हैं।
1: चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं।
0: वाह, चलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम, कि हमारे विचारों को अगर हमने सही दिशा में मोड़ लिया तो हमारे काम सही दिशा में होने लगेंगे। और जब हम अपने अच्छे कामों को करेंगे तो हमारे जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही। हमसे जुड़े लोग भी इस
1: अच्छे
0: बात से
1: काम करने
0: लाभान्वित
1: के साथ
0: होंगे।
1: साथ हम भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं सर।
0: वाह वाह वाह वाह, चलिए इसी बात को हम यहीं पर विराम देंगे, एक गीत आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाएंगे सर?
0: हाँ, ये आपकी पसंद की गीत तो हम अलग अलग कार्यक्रमों में सुनवाते आए हैं। आज जो है बात आपकी रहेगी, गीत हमारे रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा ठीक है सर जी, ठीक।
0: नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: सर जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। मैं नवागढ़ कटे जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: नारायण प्रसाद जी,
1: जी सर,
0: बेमेतरा
1: जी सर,
0: छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया है।
1: जी सर।
0: रेडियो से आपका नाता कब से जुड़ा है? क्योंकि
1: अभी जानते हैं
0: आज
1: मैं। हाँ सर जी।
0: जी आज बात आपकी गीत हमारे में, हम इसी विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।
1: जी सर,
0: हम
1: जी
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडियो से कब से आपका जुड़ाव हुआ है, कब से आपने रेडियो आकाशवाणी को सुनना शुरू किया है।
1: हाँ सर जी, जब से मैं विद्यार्थी जीवन में था सर जी, तभी से मैं रेडियो सुनना चालू किया हूँ। और सन 82 में सर जी मैं हायर सेकेंडरी किया हूँ, और उसके बाद तो रेडियो से जुड़ा ही रहा हूँ पहले से। और अभी तक मुझे जो रेडियो का सहयोग है, या कहिए तो इनसे जो हमारे लिए देन है, वो बहुत बड़ी देन है सर जी। हमने चलना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, और जो भी हमारे जीवन में दिनचर्या की बातें हैं वो सब हमने रेडियो से ही सीखे हैं सर जी। रेडियो की जो प्रस्तुति है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है सर जी।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रेडियो ने आपके जीवन को इस तरह संवारा है, सजाया है कि
1: जी सर,
0: आपने
1: जी
0: अपनी
1: सर,
0: प्रत्येक गतिविधि को रेडियो के माध्यम से सीखा है, रेडियो के साथ जोड़ के रखा है।
1: जी सर,
0: तो 90 वर्षों का जो एक लंबा सफ़र आकाशवाणी ने तय किया है, वह आप जैसे श्रोताओं के इन्हीं कदमों के साथ में साझा किया है। आप बराबर के साझेदार हैं आकाशवाणी के इन गौरवशाली वर्षों के।
1: जी सर,
0: आइए
1: जी
0: एक
1: सर,
0: गीत आपके नाम करते हैं।
1: जी
0: आप इसी
1: सर,
0: तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। आपको करते हैं हम नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
3: क्या?
2: मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है?
3: हाँ है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी भोपाल।
1: हाँ जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
2: फोन करो, गीत सुनो।
1: आज बात आपकी गीत हमारे,
2: मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ
1: जी,
2: बुरहानपुर एमपी से।
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: मोहम्मद हुसैन अंसारी।
1: हाँ जी अंसारी साहब, आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी के जो इन 90 वर्षों की यात्रा के आप और हम साझेदार रहे हैं, साझी रहे हैं, इस यात्रा में आप आकाशवाणी के किस योगदान को हमारे बीच में बताना चाहेंगे, रेखांकित करना चाहेंगे?
2: अरे ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ।
1: हाँ हाँ,
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा,
2: टीवी से बेहतर आकाशवाणी रेडियो रहती है। और जब भोपाल आकाशवाणी भोपाल से शुरू हुआ तो बहुत खुशी हुई। चलो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में भी शुरू हो चुका है। बहुत की मालूमात हासिल हुई है और बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा जी,
2: 90 वर्ष पूरे होने

0: हाँ जी नमस्कार।
1: ये भोपाल लगाया है
0: हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं
1: जी सर।
0: और हम इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए।
1: जी सर गाना सुनना।
0: आज चूंकि विषय हमारा है कि आकाशवाणी के जो 90 वर्षों की यात्रा रही है, इस यात्रा में आपने आकाशवाणी से क्या सीखा, आकाशवाणी का क्या योगदान रहा आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और आप उस बात को हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: आकाशवाणी से सब सीखा है, खेती किसानी का सीखा है और हर चीज आता है और गाना भी सुनते हैं। खेला है हम
0: अच्छा जी,
1: रेडियो बगल में चलता रहता है।
0: अच्छा, काम के साथ में आपका रेडियो हमसफर बना हुआ है ये कह सकते हैं।
1: रेडियो से हर चीज मिलती है सर, हर काम सीखते हैं, अच्छी बातें कहने से अच्छा दिमाग होता है सुनने से। खेती किसानी के आते हैं, ये बीमारी है डॉक्टर लोग आते हैं, इनसे हर शिक्षा मिलती है कैसी बीमारी को कमाना चाहिए।
0: इन सब चीज़ों से, इन प्रसारणों को सुनते हुए आपके दिन में, आपके काम में कोई व्यवधान तो नहीं होता है?
1: नहीं होता है सर, रेडियो बजता है उसमें क्या व्यवधान होता है, सुनते रहते, मशीन चलाते रहते।
0: अरे वाह, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर सीखने को मिलती होंगी जिनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर हुआ होगा।
1: हाँ लाभ हुआ है सर, लाभ हुआ है।
0: जी, तो ऐसा कोई पल जो आप हमको ज़रूर बताना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी से सबसे ज्यादा सीखा है खेती किसानी का।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये वैज्ञानिक लोग जो बात बताते हैं, उन्हीं को तो

0: दवा लेकर बाजार से दवाई का छिड़काव है चीज। खेती का जो उपचार करने बीज का वो भी सीखता रहता हूँ, उसी तरीका से खेती कर।
1: आपकी खेती है
0: जी?
1: अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो कार्यक्रम आते हैं जो किसान भाइयों के लिए रहते हैं, जिनके माध्यम से हम तरह तरह के मौसम से जुड़ी हुई सलाहें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे अलग अलग मुख्तलिफ कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो जानकारियां देते हैं, इन जानकारियों से आप जैसे किसानों को, आप जैसे अन्नदाताओं को लाभ होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण होता है, हम अलग अलग कार्यक्रमों को लेके आते हैं, अलग अलग श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, तो जिन कार्यक्रमों को हम किसान भाइयों के लिए पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उन कार्यक्रमों से अगर हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें।

0: और इसी के साथ ख़त्म होता है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोईशाक के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा के शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनू नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं आप सभी के पत्रों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप सभी की फरमाइश से। लिखने वाले हैं नहेर नगर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि। उपाध्याय नगर देवा से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। देवा से ही राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश, हरिराम माली, विष्णु, कपिल और निरंजन। उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद, सालगराम, दशरथ। और देवा से ही जमील खान, इमरान और फुरकान। आप सभी ने सुनना चाहा है एक दूजे के लिए फिल्म का नख्मा।

आइए आपको सुनवाते हैं बहू बेगम फिल्म का नगमा, जिसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं विद्यानगर तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नेमा, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और इनके परिवार के सभी सदस्य, धमतरी से रामचंद मखीजा, शंकर लाल, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा और समस्त इनके परिवार, इन्होंने ये हमें ख़त लिखा बठिंडा से। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म का नगमा, अलका याग्निक की आवाज़ में।

मैं हूँ ना फिल्म का गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है। महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश बागरिया, प्रयाग, प्रदीप और केशव पटेल, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जारूजिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं। मैं हूँ ना फिल्म का ये नगमा।

औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सभी सदस्य। सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौंड। आप सभी ने सुनना चाहा है टाइगर जिंदा है फिल्म का नगमा, तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये।

तो श्रोता, ये था आज का हमारा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आप इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। ये आकाशवाणी का आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जादूगर को सलाम धारावाहिक का 10वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धारावाहिक की 10वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी, गुप्त धन का नाट्य रूपांतरण। बाबू हरिदास का ईंटों का भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और भट्टों से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते। एक आदमी भट्टे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिला करती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से दबे हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य होता था। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दूनी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता था। लेकिन मगन सिंह को अपने काम से ही काम था। उसमें लड़कपन की चंचलता नहीं थी, ना शरारत और ना ही होशियारी। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर बहुत दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दे। कभी कभी उसे वो कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन उन्होंने मगन सिंह को अपने पास बुलाकर बैठाया और उसका समाचार पूछने लगे।
1: मगन सिंह बेटा, जरा अपने और अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताओ।
2: जी बाबूजी, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ।
1: अच्छा।
2: वही हमारा पुराना सा घर है, जिसमें मेरी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं है। माता एक पुराने रोग से पीड़ित हैं, इसलिए घर का सारा काम मेरे जिम्मे में है। बाबूजी, शाम को काम से वापस लौटकर मैं खुद ही रोटियां बनाता हूँ, तब जाकर हम माँ बेटे को खाना नसीब होता है। हम ठाकुर लोग हैं और किसी समय हमारा खानदान धन संपन्न था और शकर का कारखाना चलता था, कुछ जमीन भी थी, पर आजकल रोटियों के लाले हैं।
1: गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते?
2: वाह, उनका वश चले तो मुझे मार ही डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं।
1: तुम्हारा तो पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ बताया नहीं?
2: नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बताया। अगर रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती।
1: मगन, आज से तुम्हारे बुरे दिन दूर हुए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से तुम मजदूर नहीं हो, मेरे खास नौकरों में से हो। आज से कोड़ियां बांटने का काम तुम करोगे।
2: जी बाबूजी, आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
1: मुंशी जी।
3: आया हुजूर।
1: मुंशी जी, आज से ये कौड़ियां बांटने का काम करेगा, इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखा दीजिए।
3: माँ, माँ।
4: हाँ बेटा, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है।
3: हाँ माँ, आज से हमारे बुरे दिन दूर हुए। माँ, जहाँ मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, वही बाबूजी के यहाँ,
4: हाँ,
3: वहाँ आज बाबूजी ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा।
4: अच्छा, मेरे बारे में पूछा?
3: उन्होंने मुझे काम में तरक्की भी दे दी है। अब मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मैं उनका खास नौकर बन गया हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने की बात भी की है। माँ, और फिर तुम भी जल्दी अच्छी हो जाओगी। माँ
4: अच्छा, मेरे लाल जीते रहो मेरे बेटे, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। हे भगवान, तूने मेरे अंधियारे घर में रोशनी की एक नई किरण भेजी है, जिन्होंने मेरे लाल को ये खुशी दी है। तुम उनका भी घर खुशियों से भर देना, हे भगवान, खुशियों से भर देना। बेटा मगन, वहाँ पर मन लगाकर काम करना, अच्छा, उन्हें किसी भी शिकायत का मौका मत देना।
3: हाँ माँ, ऐसा ही होगा।
0: अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ और चतुर लड़का था। मगन सिंह काम पर हमेशा समय से पहुंचता और कभी भी छुट्टी नहीं करता था। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी वो कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, भट्टे में पानी भरा हुआ था, काम धंधा बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से काम पर नहीं पहुंचा था। हरिदास को चिंता हुई, कई आदमियों से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के वो घर जा पहुंचे। घर क्या था, घर तो जैसे खंडहर बन चुका था, लेकिन परिवार की पुरानी संपन्नता का एहसास करवाता था।
5: क्या बात है, 3 दिन हो गए, मगन सिंह का कुछ पता ही नहीं। कहीं बीमार तो नहीं हो गया, या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई?
1: मगन सिंह, बेटा मगन सिंह, अरे कोई घर में है क्या?
3: अरे बाबूजी, आप आइए, बाबूजी आइए आइए।
1: अरे मगन सिंह, कई दिन से आया क्यों नहीं, माताजी का क्या हाल है?
3: बाबूजी, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा, पर मैं संकोच के मारे आपके पास नहीं आ पाया। अब आप सौभाग्य से हमारे घर आ गए हैं, तो जरा चलकर उन्हें भी देख लीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
0: सारे घर में दरिद्रता का वास था, केवल 2 कोठरियां गुजर करने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बुलाया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि लकड़ी के तख्त पर पड़ी एक वृद्धा कराह रही है।
4: बड़ी दया की आपने मालिक, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी मुझे, मेरे अनाथ बच्चे के अब आप ही नाथ हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, बस वही निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक समय हुआ करता था जब हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता था, मगर बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने उसी दिन के लिए कुछ खजाना जमीन में छुपा दिया था। मालिक उसके कागज पत्र बड़े यत्न से संभाल कर रखे थे मैंने, पर बहुत दिनों से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मगन के पिता ने बहुत खोजा, पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मालिक। नहीं तो आज हमारी इतनी बुरी दशा नहीं होती। मालिक, आज 3 दिन हुए मुझे वो कागज पत्र अचानक खुद ही रद्दी के कागजों में मिल गए। बस तब से उन्हें छिपा कर रख लिया है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से खजाने के ठिकाने का भी पता चलेगा। मालिक, अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा मालिक। बस यही सब कहने को आपको बार बार बुलाती रही, आपके सिवा मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। संसार से विश्वास उठ गया है मालिक। किसी की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
0: हरिदास ने उस कागज का जिक्र किसी से नहीं किया। हरिदास की नियत बिगड़ गई। कागज को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 कदम दूर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानों कान खबर ना हो। काम मुश्किल था, नाम पर धब्बा लगने की अधिक आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी। जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, परंतु अंत में लालच ने विवेक को हरा दिया।
5: मैंने कभी धन का परित्याग नहीं किया और न करूंगा। क्या कोई प्राणी ऐसा भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूं। मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने की कोई इच्छा नहीं है।
0: मन को समझाना बच्चे को जैसे फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाता। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर जा बैठता और एक कुदाली से उसे खोदता रहता। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय ना हुई थी। हरिदास एक विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार उन्हें धिक्कारती, निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर कभी नहीं जाऊंगा। पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। और इसी तरह दूसरा महीना भी बीत गया।
6: आज चबूतरा खोद डालूंगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई चिंता की बात नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हो जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा है, और धोखे के सिवाय कुछ नहीं। कहीं सचमुच तहखाना न मिला तो मुफ्त में ही उल्लू बनूंगा। पर लेकिन नहीं, कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चमक है। तहखाना मिल गया, तहखाना मिल गया। ये सिर में दर्द कैसा है? शायद थकान के कारण होगा। नहीं, ये बीती रात नींद पूरा ना होने से है शायद।
0: ये दर्द और थकान नींद से ना गई। रात को ही हरिदास को जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे, पर किसी दवा से भी फायदा नहीं हुआ।

0: कहीं ये मेरे लालच का दंड तो नहीं है। जी में ऐसा आता है कि मगन सिंह का कागज दे दूं और माफी मांग लूं, पर भेद खुल गया तो नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा। अरे
1: और इस प्रकार

0: कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। जब उन्होंने इस काम को गलत नहीं समझा तो मैं ही ऐसा क्यों सोचूं? कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख का जीवन बीते। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही प्रभुदास घर से बाहर निकला। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। तहखाना संगीन था, पुराने जमाने का मसाला था। कुल्हाड़ी लौट लौट आती थी लेकिन चट्टान टस से मस ना हुई। किसी से सहायता मिलने की सूरत ही नहीं थी। सारा काम स्वयं ही करना था। समय बीतता रहा, यहां तक कि फिर वही अमावस्या की काली रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य की रेखाओं की तरह अटल थीं। आज इस समस्या का हल करना आवश्यक है। मेरे मन की लालसा मन ही में न रह जाए। क्या करूं क्या करूं, बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हाँ, क्यों ना बारूद से उड़ा डालूं। कल पर काम छोड़ने का अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, बाजार जाकर अभी बारूद लाना होगा। अरे, सब दुकानें बंद हो चुकी, रात भी काफी हो चुकी है। हाँ, वो आतिशबाजी की दुकान अभी खुली है। हाँ, शायद बारूद वहां मिल जाए, उसी से जाकर पूछता हूँ।
1: बारूद इस समय नहीं मिल सकता भाई, सरकारी हुकुम नहीं है। तुम कौन हो जी?
0: अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब है?
1: लेकिन इस समय बारूद लेकर क्या करोगे भैया? कोई वारदात हो जाए तो? ना भैया ना, मैं मुफ्त में बंधा बंधा फिरूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा?
0: अब तो हो जाएगा ना, क्यों?
1: ठीक है भैया, ले जाओ, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कह देता हूँ। हाँ,
0: आखिरकार खजाना मिल ही गया। इसमें तो बहुत वजन है, क्या मैं इसे उठा पाऊंगा? लगता है 10 से 12 हजार मोहरे तो होंगी। कोशिश करता हूं। सच में जीवन बदल जाएगा, सब मेरे वश में होगा, फिर जो चाहे मैं कर सकूंगा। लेकिन लेकिन कहां छुपाऊं ये खजाना? हाँ, ये जगह सुरक्षित है, अपने शयन कक्ष में ही अपनी आंखों के सामने रखता हूं। यही ठीक रहेगा। चलो भैया, ये भी हो गया, कुछ देर अब आराम करूं। ये क्या? ये मेरे दिल में बेचैनी सी कैसी हो रही है? ये कैसा भीषण दर्द हो रहा है? अरे, ऐसा तो पहले कभी महसूस ही नहीं किया। अरे, ये तो मेरे दोनों कंधे भी जकड़े जाते हैं, अब सांसें भी रुकी जाती हैं। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे तो हाथ पैर बोझिल हो चले। क्या क्या ये सब थकान की वजह से? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है।

0: दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरी सांसें बंद हो ही जाती हैं। माँ माँ माँ माँ, अरे कोई है माँ?
1: प्रभु प्रभुदास बेटा, क्या हो गया?
0: माँ मेरा सिर दर्द से फटा जाता है, सांसें रुकी जा रही है, पता नहीं अचानक क्या हुआ माँ।
1: अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना, ओ मीना, ठहरो मैं भी वैद्य जी को बुलाती हूँ।
0: हाँ,
2: सारी रात मीना और माँ प्रभुदास के सिरहाने बैठी रहीं। वैद्य जी उपचार करते रहे परंतु सब बेकार। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था, और इसी में सारी रात निकल गई।
3: भट्टे पर चलिएगा हुजूर, गाड़ी तैयार है।
0: नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। मगन सिंह, एक काम करो, तुम भी मत जाओ आज।
3: सरकार, डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ, आप आराम कीजिए।
0: कोई लाभ नहीं मगन सिंह, कुछ नहीं हो सकता।
2: सवेरे के 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा आंखों के सामने तैर गई। ऐसा जान पड़ता था मानो वही शोक घटना उन्हीं आंखों के सामने दोबारा घटित होने जा रही हो। मां देवताओं की मनोतियां मना रही थी, और यही हाल प्रभुदास की धर्मपत्नी मीना का था। परंतु प्रभुदास की आंखें उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं।
4: भगवान, मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करो, इसे क्या होगा? हे भगवान,
1: हे प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए।
5: हाँ भैया, पिता और पुत्र दोनों ही भले लोग थे।
6: हाँ भैया, सही कहते हो, पर एक बात समझ में नहीं आती, जैसा बाबू हरिदास के साथ हुआ ठीक वैसा का वैसा प्रभुदास के साथ हो रहा है।
7: हाँ भैया, ये कैसी दैवी विपत्ति इनके घर पर आ गई।
8: लाला जी, दोनों बाप बेटे भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, ईश्वर ही अब इस घर का मालिक है।
2: प्रभुदास की मृतप्राय आंखों में आंसू थे, पर आंखें अभी भी निराशा पूर्ण भाव से संदूक पर ही टिकी थी। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो चुके थे, मुख निस्तेज हो चुका था, हृदय गति बंद हो चली थी, सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, लेकिन आंखें थीं जो अभी भी संदूक से नहीं हटती थीं। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था, सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण और सबसे भयंकर दृश्य है। मगन सिंह के लिए माता की मृत्यु के उपरांत ये इतने कम समय में तीसरा अवसर था।
9: मालिक, मालिक, ये आपको क्या हो गया मेरे अन्नदाता? मालिक,
0: मगन सिंह की ओर देखता हूं तो सारे शरीर में मानो जीवन का संचार हो जाता है, और संदूक की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। मगन सिंह, इधर आओ।
9: मालिक,
0: इधर।
9: मालिक,
0: ये संदूक तुम्हारे पुरखों का खजाना है, तुम्हारी अमानत है। हाँ, हाँ मगन सिंह, ये तुम्हारी अमानत है। मुझे और पिताजी को क्षमा कर देना, पिताजी को और मुझे क्षमा कर देना। चलता हूँ।
9: मालिक, मालिक।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 10वीं कड़ी गुप्त धन। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, मनहा प्रत्यक्षा, माधवा अनंत, हीरेंद्र झा और विकास बाबू शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा के शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कूनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। यह दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

जिंदगी में आए इम्तिहानों से घबराइए नहीं, बल्कि शुक्रिया कहिए उस परमात्मा को जिसने आपको इम्तिहानों के काबिल समझा है। इस सुविचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। नमस्कार बहनों, आज हम सरकार की एक और योजना पर बातचीत साझा करेंगे जो कि महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है नंदिनी सहकार योजना। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप शुरू की गई थी। ये योजना महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता की एक और पहल है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसमें महिला उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और अन्य योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत किया गया है। बहनों, इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC के तहत महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का पहला उद्देश्य वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करके सहकारी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे कई क्षेत्रों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है, जिससे महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर मिल सके। इस योजना की विशेषता ये है कि यह सहकारी व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करके महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही विकास गतिविधियों के लिए महिला सहकारी समितियों को कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। तो बहनों, बातें हम और भी करेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अब आइए सुनते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से और जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

अभी हमने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत सुना। बहनों, आज का परिवेश ऐसा है कि लोगों को सुंदर और आकर्षक दिखना बहुत पसंद होता है। हर कोई सजना सवरना चाहता है और हम महिलाओं में तो इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा होता है। इसके लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ब्यूटिशियन बनना एक ऐसा काम है जो रोजगार का बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है। तो बहनों, ब्यूटिशियन एक प्रशिक्षित पेशेवर होती हैं, जो लोगों को सुंदर दिखने और बेहतर महसूस करने में हमारी मदद करती हैं। उनका काम है त्वचा की देखभाल और मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग और नेल केयर तक कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा वो सैलून, स्पा में या फ्रीलांसर के रूप में भी काम करती हैं। और बहनों, फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, वैक्सिंग और मैनीक्योर, पेडीक्योर जैसी सेवाएं भी देती हैं। बहनों, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कैरियर के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। 2026 तक यह उद्योग बहुत आगे बढ़ा है और इसमें नौकरी व स्वरोजगार के बेहतरीन विकल्प हैं। जैसे आप खुद का सैलून या पार्लर शुरू कर सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप शादियों, पार्टियों या इवेंट्स में फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। बहनों, आजकल नेल आर्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसमें भी अच्छा कैरियर है और आप किसी बड़े सैलून, स्पा या वेलनेस सेंटर में सीनियर ब्यूटिशियन के तौर पर भी काम कर सकती हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो फिल्म, टीवी या फैशन शो में मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका निभा सकती हैं। बड़ी एयरलाइंस कंपनी एयर होस्टेस के लिए मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन नियुक्त करती है। साथ ही ब्रांड्स के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए कॉस्मेटिक कंपनियां कंसल्टेंट नियुक्त करती हैं और अगर आपको अनुभव है तो आप ब्यूटी स्कूल या एकेडमी में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। बहनों, इस क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए प्रमुख कोर्स आपको करने होंगे, जैसे डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, ये कोर्स 12 महीने का होता है, हेयर डिजाइनिंग और कलरिंग कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स और स्किन केयर या फेशियल कोर्स। बहनों, एक ब्यूटिशियन में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हैं बालों की स्टाइलिंग, कटिंग और कलरिंग, मेकअप करना, स्किन केयर ट्रीटमेंट और फेशियल, साथ ही त्वचा की समझ और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बहनों, अब वक्त है छोटे से अंतराल का और आइए एक और गीत सुन लेते हैं। फिल्म है मेरे जीवन साथी, जिसे आवाज दी है किशोर।

0: अभी हमने किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। बहनों, आज है हमारे बीच वंदना द्विवेदी जी, जो कि एक ब्यूटिशियन है। पिछले 20 वर्षों से वो इस क्षेत्र में जुड़ी हैं। तो चलिए उनसे करते हैं विशेष बातचीत। विषय है ब्यूटिशियन में रोजगार की संभावनाएं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप एक ब्यूटिशियन है, तो पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने ये क्षेत्र क्यों चुना।
2: मुझे शुरू से शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊं और इसमें काम करूं, पर थोड़ी सी समस्या आई मुझे इसमें आने के लिए, पर हो गया। मैंने इसको शुरू किया और मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं पूरी अपने जोश के साथ काम कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा बाहर जाना, बच्चे छोटे थे तो बाहर नहीं जा सकती थी, घर में इतना अलाउ भी नहीं करते थे कि मैं बाहर जाऊँ या इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मुझे शौक था। तो जब छोटी छोटी क्लासेस यहाँ होती रहती थी तो वो मैं अटेंड करती थी, सेमिनार्स अटेंड करती थी, उससे मैं थोड़ा करके सीखती रह गई। फिर बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो मुझे लगा नहीं, अब इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे आ गए। पहले मैं अपने घर के पास ही एक छोटा सा लेके सलून वहाँ चलाती थी और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ।
1: मैडम, हर रोज फैशन का ट्रेंड बदलता है, तो आप ट्रेंड के साथ खुद को कैसे अपडेट रखती हैं वो

0: भी आप हमारी श्रोताओं को बताइए।
1: फैशन तो हमारा हर तीसरे दिन चौथे दिन चेंज होता रहता है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट हमारी जैसे डिमांड करता है। क्लाइंट कभी कभी हम बताते हैं कि नहीं ट्रेंड ये चल रहा है आप ये करवाओ, लेकिन नहीं क्लाइंट बोलता है नहीं हमको ये नहीं चाहिए हमको ऐसा चाहिए। तो हमारा सबसे पहले ये रहता है कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करें, तो फैशन जैसे क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है।
0: आपने ब्यूटीशियन का कोर्स भी किया होगा, तो आप हमारी श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये कोर्स करते हैं और कितना इसमें वक्त लगता है।
1: ये कोर्स सब अलग अलग रहता है, जैसे कोई 3 मंथ्स का करता है, कोई 6 मंथ का करता है, कोई 12 मंथ का करता है। मेन बेसिकली ये 6 मंथ का कोर्स होता है जो हमारा ब्यूटीशियन कराता है। फिर प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस अब ये अपने दिमाग के ऊपर अपने मेहनत लगन के ऊपर होता है कि हम इसमें कितना टाइम लगा देते हैं। जो अगर दिमाग अच्छा और मेहनत किया तो वो 3 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर लेता है। और लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर गली हर मोहल्ले में सैलून खुल रहे हैं, तो लड़कियां क्या की कि महीने 2 महीने अपना कोर्स कर लें बस हमसे बनने लगा और वो खोल ली, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं तो हर ब्यूटिशियन को यही बोलूं जो आज की जनरेशन है और इस फील्ड में आ रही है, तो वो पहले सीखे तो ठीक है सीख तो ली, लेकिन वो प्रैक्टिस करें। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पीछे ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। तो कोर्स तो ये 6 मंथ का ही रहता है, 3 मंथ का भी रहता है, बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम
0: कितना टाइम लगाते हैं सीखने। मैडम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप हमारी श्रोताओं को कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस समय तो सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खीरा खाएं, या हमारे किचन से ही बहुत सारे ब्यूटी टिप्स हैं। जैसे दही हो गई, मैं बोलती हूँ क्लाइंट को दही, आप जिस किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो मैं उनको बोलती हूँ आप 2 स्पून दही वो करिए निकालिए और चाय की छन्नी में डालिए, उसका पानी निकल जाता है, उसमें आप शहद मिलाइए और उसको फेंटिए, वो एक टाइट पैक तैयार हो जाता है। उसको आप फेस में अप्लाई करिए, वो एक ब्लीच का काम करता है। आप जब जाते हैं क्लाइंट यहाँ सैलून में और आप ब्लीच करवाते हैं, वो आपको साइड इफेक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिवेटर रहता है वो अमोनिया रहता है। लोग ज्यादा से ज्यादा, बहुत लोग अपने घर में ब्लीच कर लेते हैं और धीरे धीरे स्किन ब्लैक होने लगती है। ज्यादातर सलून में होता है कि 15 दिन में क्लाइंट आता है और ब्लीच कर दो ज्यादा ग्लो आ जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ कम से कम 3 से 4 मंथ आप देख लीजिए उसके बाद। जैसे कोई बोलता है हमको डार्क सर्कल है, तो हम बोलते हैं संतरे, इस समय ऑरेंज बहुत आ रहे हैं, आप लो और उसका जूस निकालो, 1-2 कली संतरे का जूस निकालो, उसमें आप शहद मिलाओ और कटोरी में या बाउल में भर के आप फ्रिज में भी रख दो, कॉटन में लेके आप उसमें डार्क सर्कल में आप अप्लाई करो, पूरे फेस में अप्लाई करो। ये जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर जिनकी ड्राई स्किन हो गई उनको मैं बोलती हूँ आप मलाई ले लो, उसमें शहद मिला लो या 1 चुटकी हल्दी उसमें मिला लो, उसको लगाओ, आप एलोवेरा जेल लगाओ। ऐसे बहुत सारी होममेड चीजें हैं जिनको, मतलब मैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा बताती हूँ कि आप ये करिए ये करिए। आप खाना भी बना रहे हो, पका पपीता आपके घर में है, वही आप फेस में लगा लो, आप अपने गर्दन में लगा लो, खाना बना रहे हो फिर अपना फेस धो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भी बताने लगेंगे तो
0: जी मैडम आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इतने व्यस्ततम दिनचर्या में भी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ लजीज और हेल्दी व्यंजनों की रेसिपी। आज के व्यंजन में हम सिकंजी मसाला पाउडर की रेसिपी बताएंगे, जिससे आपको सिकंजी बनाने में सोचना नहीं पड़ेगा। ये मसाला आप बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं, और फिर जब मन चाहे आप अलग अलग तरह की सिकंजी, छाछ, लस्सी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब आइए सिकंजी मसाला बनाते हैं। इसके लिए हमें एक कड़ाही को गैस में रखकर फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब उसमें 2 टेबलस्पून जीरा भूनेंगे। इसे हल्का ही भूनना है जिससे कच्चापन चला जाए। अब भुना हुआ जीरा एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून कच्चा जीरा मतलब बिना भुना हुआ जीरा लेंगे। अब 2 चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च हम लेंगे। इन सबको ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें लेंगे 2 से 3 इलायची और 2 बड़े चम्मच काला नमक, साथ ही 1 चम्मच सफेद नमक जो हम

ये सब चीजें वो हैं जो डाइजेशन को सही करती हैं। अब इसमें जाएगा एक चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर और इन सब चीजों को पीस कर एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए और एक एयर टाइट डिब्बे में डालकर स्टोर करके रख लीजिए। बहनों, सिकंजी बनाने के लिए हमें शक्कर को घोलने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 कप पानी और 2 कप चीनी। अब इसे गैस पर रखकर एक उबाल आने तक पका लेंगे। फिर ठंडा करके एक बॉटल में कम से कम 1 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं अलग अलग स्वाद की सिकंजी। सबसे पहले फ्रेश पुदीना के पत्ते लेंगे। अब इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। अब लीजिए कांच के 2 गिलास, उसमें पहले डालेंगे आधा आधा नींबू का रस निचोड़कर। अब जाएगा 2 बड़े चम्मच शुगर सिरप जो हमने बनाकर तैयार किया था वो। इसके बाद जो सिकंजी मसाला पाउडर बनाकर रखा था वो 1-1 छोटे चम्मच दोनों गिलास में डाल देंगे। अब जाएंगे कुछ आइस क्यूब्स, फिर जो हमने पुदीने के पत्ते मसल कर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिर 1 गिलास में हम डालेंगे सिंपल चिल्ड वाटर। फिर डेकोरेट कर दीजिए पुदीने के पत्ते और नींबू स्लाइस से। तो हमारी मार्केट स्टाइल सिकंजी बनकर तैयार हो गई। अब जो दूसरा गिलास हमने लिया था उसमें डालेंगे सोडा वाटर और मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेश ठंडी ठंडी सिकंजी बनकर तैयार हो गई। बहनों, अभी आम का सीजन चल रहा है तो गर्मियों में आम का पना हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें लू से बचाता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। तो इसके लिए लेंगे कच्चे आम, उन्हें उबालकर पल्प निकाल लीजिए, फिर पानी डालकर पतला सा घोल बना लीजिए। अब सिकंजी मसाला और आइस क्यूब डालकर ठंडा ठंडा आम का पना बनाकर पी सकते हैं। बहनों, इस गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और खुश रहिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। अब अंत में एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है असली।

अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो दीजिए इजाजत फिर मिलने के वादे के साथ। अपनी बहन कल्पना को नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: नसंसनी
1: ना उत्तेजना
0: न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामस्वरूप साकेत के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विकास गीत।

रामस्वरूप साकेत के गाये इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की पेशकश आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं फिल्म नोटबुक से लिए गए इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है विशाल मिश्रा और कमाल खान ने।

0: दर्शन रावल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म थी लूडो। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब।
0: राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा,
2: शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता का नया सूर्योदय हुआ है और यहाँ पर जंगल राज का अंत हुआ है, गुंडागिर्दी का अंत हुआ है। निश्चित रूप से इस अवसर पर बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। कृपया से दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर

0: नाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे सरदा धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने संसदीय क्षेत्र गुना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। देश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार और 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है।
1: अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: वहीं रायसेन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने के निर्देशन में आयोजित इस अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंरचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। आज के लिए 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आगरमालवा जिला जेल एवं वृद्धाश्रम में कल आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को स्वास्थ्य, पेंशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। जबलपुर में जिला अस्पताल विक्टोरिया और सरकारी संस्था पार्थ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल 10 मई को नीमच में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
5: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
4: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
6: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
3: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में, संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां ने, लक्सर हरिद्वार से, बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। फिल्म सीता और गीता के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय की भी यही फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित और समस्त राजावत परिवार।

आपकी फरमाइश का अगला गीत है हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली, भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब और उनके सभी साथी, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। साथ ही कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये फरमाइशी पत्र आया है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म रफू चक्कर का गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत कल्याण जी, आनंद जी का।

आपकी कसम, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। आर डी बर्मन के संगीत से सजे इस गीत को लिखा

0: शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवहाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश भेजी है। बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि, परी और गवहाणकर परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइश है। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का ये गीत।
1: सुनो,
2: कहो,
1: कहा,
2: सुना,
1: कुछ हुआ क्या?

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में बिट्ठल भाई पटेल का लिखा गीत। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बॉबी फिल्म के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आर

इसी गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अनिल कवचाले, नेहा फड़सी, सीमा सबीहा, कमल पूजा, नैना सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी गोमाश्ता नगर इंदौर से। द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने अपनी फरमाइश दत्रेगी से भेजी है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर की भी यही फरमाइश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 आप एक विशेष भेंटवार्ता सुन सकेंगे। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का दूसरा भाग में आप सुनेंगे साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का होगा, जिसमें गीत संगीत और चर्चा तो शामिल ही होगी, साथ ही आप सुन सकेंगे बुंदेली समाचार और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा। रात 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम का रहेगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 से सुनेगा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगे राजकुमार मजुमदार, आपका संतूर वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

प्रमुख रेल मार्गों की क्षमता को बढ़ाना और भीड़भाड़ कम करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश भर में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।

पढ़ाई सभी के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होता, और ये कोई मॉडर्न विचार नहीं है। ये विचार रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, लेखक और चिंतक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार शिक्षा बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास करनी चाहिए, उसकी बुद्धि, भावनाओं, कल्पना शक्ति और शरीर का। टैगोर जी कहते थे कि बच्चा प्रकृति से सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां कक्षाएं खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाया में होती थी। बच्चे वहां गाते, खेलते, नाचते और प्रकृति को निहारते हुए सीखते थे। वो मानते थे कि जब बच्चा खुश और स्वतंत्र होता है, तभी उसमें असली सीखने की इच्छा जागती है। उन्होंने पुरानी रट्टा मार शिक्षा की बहुत आलोचना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कारखाने की उपमा दी, जहां बच्चे मशीन की तरह तैयार होते हैं। टैगोर चाहते थे कि शिक्षा बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ाए, इसलिए उन्होंने संगीत, कला, नृत्य, हस्तकला और साहित्य को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाया। टैगोर के अनुसार शिक्षक बच्चे का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि डराने वाला। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को संवेदनशील, स्वतंत्र और अच्छा इंसान बनाना है। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां भारत और विदेशों की संस्कृतियों का सुंदर मेल हो और पूरा विश्व एक परिवार बनकर रहे। आज के समय में भी टैगोर का शिक्षा विचार बहुत प्रासंगिक है। हमारी स्कूलों में बच्चे हैवी बैग और टेंशन लेकर के जाते हैं। टैगोर हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का मतलब बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना, उसकी जिज्ञासा को जगाए रखना और प्रकृति से जोड़ना है। टैगोर का मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य को पूर्ण बनाती है, उसे स्वतंत्र सोचने की शक्ति देती है, पूरे विश्व के प्रति प्रेम सिखाती है और संवेदनशील बनाती है। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं केके और सलीम मर्चेंट की रूहानी आवाज में आशाओं से भरा ये गीत।

0: दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले 10th 12th का रिजल्ट आया और मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दी गई। इसी तरह राज्य और केंद्र सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना रुके और प्रोत्साहन के लिए उन्हें हमेशा सहायता राशि देती हैं। ऐसी ही भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम यशस्वी। इस योजना के बारे में और जानते हैं सिपाली मिश्रा से।
1: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया मतलब प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समुदाय से आते हैं। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान दें। सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। पीएमएसएसवी एक छात्र योजना है जिसमें कई छोटी योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन अच्छे कॉलेजों में

0: हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना इसमें शामिल है। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 9वीं के छात्रों को 75,000 प्रति वर्ष मिलती है और कक्षा 11वीं के छात्रों को 1,25,000 प्रति वर्ष मिलती है। यह राशि ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हॉस्टल फीस और अन्य पढ़ाई संबंधी खर्चों के लिए दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन में और भी ज्यादा सहायता मिल सकती है, लेकिन बात ये भी है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो, इसलिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ओबीसी, AWS या SC/ST वर्ग से होना चाहिए, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, स्टूडेंट कक्षा 9वीं या 11वीं में सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहा हो, लेकिन मेरिट के आधार पर चयन होता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब कई जगह पिछले क्लास के मार्क्स 60% या उससे ज्यादा के आधार पर चयन होता है। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो दोस्तों, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड और पिछले क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास कोई योग्य छात्र है तो इस योजना का लाभ जरूर दिलाएं। इसी के साथ मैं सिपाली मिश्रा विदा चाहूंगी, धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सिपाली मिश्रा को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आपको योजना के बारे में बहुत जरूरी जानकारी दी। लेकिन ये योजना सिर्फ पैसा देने की नहीं है दोस्तों, ये योजना उन बच्चों को आत्मविश्वास देती है जो मेहनती हैं लेकिन संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं। इससे स्कूल ड्रॉप आउट दर कम होगी, लड़कियों की शिक्षा बढ़ेगी और देश में कुशल युवा तैयार होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा योग्य छात्र है तो उसे इस योजना का लाभ जरूर दिलवाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो गरीबी और पिछड़ेपन को मिटा सकता है। सरकार ने संसाधन दिए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही तरीके से उपयोग करें। पीएम यशस्वी योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो न सिर्फ व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि पूरे देश को वाइब्रेंट इंडिया बनाने में मदद करता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अब किसी की पढ़ाई रुके नहीं, चलती रहे। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं AR रहमान और श्रीनिवास की मिली जुली आवाज में ये गीत।

दोस्तों, क्या आपने कभी फूल के बर्तनों के बारे में सुना है? कई लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दें कि फूल के बर्तन फूलों से नहीं बनते। मतलब ये किसी फ्लावर से बने हुए बर्तन नहीं होते, ये बर्तन धातुओं से बनते हैं। तो हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी विरासत में हम आपको बताएंगे फूल के बर्तनों के विषय में, जो कि आज फिर से चलन में है। आज बीमारियां बढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने पीतल के बर्तनों में खाना बनाना फिर से चालू कर दिया है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग फिर से बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। इसी तरह से फूल के बर्तन भी हैं, जो अभी से कुछ समय पहले तक सिर्फ परंपरा के तौर पर शादियों या फिर शुभ मांगलिक कामों में ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले की उचहरा तहसील कांसे के बर्तन बनाने को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ से कांसे, पीतल, फूल धातु के बर्तन कई राज्यों के साथ विदेश तक जाते हैं। इन बर्तनों में हांडा, बटुई, बटुआ, लोटा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच सभी शामिल हैं। ज्यादातर इन बर्तनों का उपयोग पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे शुभ काम और घरेलू उपयोग में किया जाता है। पूर्वजों के जमाने में ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में लोगों के घरों में यही बर्तन पाए जाते थे। वहीं इन विरासत को आगे बढ़ाने का काम उचहरा तहसील के बर्तन बनाने वाले आज भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि इन बर्तनों में खान पान करने से कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये फूल के धातु बनती कैसे है, आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, फूल टिन और लेड की मिश्र धातु है, पर इसमें कभी कभी तांबा या पीतल भी मिला रहता है। ये धातु उजली और स्वच्छ चांदी के रंग की होती है और इसमें रखने से दही या खट्टी चीजें नहीं बिगड़ती। भारत, चीन, मिस्र और यूनान जैसे देशों को फूल और कस्कुट जैसी धातुओं का ज्ञान बहुत पुराने समय से है, और प्राचीन खंडहरों की खुदाई में इनके पात्र, हथियार और मूर्तियां भी पाई गई हैं। पश्चिमी देशों में फूल से मिलती जुलती मिश्र धातु को प्यूटर कहते हैं। एक समय फूल के पात्रों का उपयोग प्रतिष्ठा सूचक समझा जाता था और इनका निर्माण अनेक देशों और नगरों में होता था। भारत में फूल का अस्तित्व पीतल से पुराना है, यहाँ इसका उत्पादन व्यापक रूप से होता था, पर आज स्टेनलेस स्टील के बनने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। गांवों में भी फूल के बर्तनों का विशेष प्रचलन है और भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसका उत्पादन होता है। अच्छा फूल बेधा कहलाता है। साधारण फूल में 4 भाग तांबा और 1 भाग टिन होता है, लेकिन बेधा फूल में 73 भाग तांबा और 27 भाग टिन का होता है और कुछ चांदी भी पड़ती है। ये धातु बहुत खरी होती है और चोट लगने पर चट से टूट जाती है। इसके लोटे, कटोरे, गिलास, बहुत से बर्तन बनते हैं। फूल कांसे से बहुत मिलता जुलता है, पर कांसे से इसमें ये भेद है कि कांसे में तांबे के साथ जस्ते का मेल रहता है और उसमें खट्टी चीजें बिगड़ जाती हैं। फूल में 80% तांबा और 20% टिन रहता है। धातुओं के विभिन्न मात्राओं के कारण इनके रंग और गुणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। नीली आभा लिए ये सफेद होता है। प्राचीन काल में गिरिजा घरों के घंटे इसी के बनते थे, बाद में और भी सामान बनने लगे। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था और उस समय या उससे पहले के बने अनेक सादे और सुंदर चित्रित प्याले, कलश, गिलास, सुराही, फ्लावर पॉट और थाल जैसे भी कई सामान पाए गए हैं। वहीं अगर हम कस्कुट की बात करें तो कस्कुट तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। कस्कुट के सामान भी वैसे ही बनते हैं जैसे फूल और पीतल के। दोस्तों, मध्य प्रदेश के फूल के बर्तनों को GI टैग भी मिला है। तो हमारी विरासत में आज इतना ही, और अब आपको सुनवाते हैं ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और शोमा की खूबसूरत आवाज में

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है छोटे से अंतराल का।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: डीडी डायरेक्ट।
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
4: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब
5: जान ऐप से बचें।
6: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा 8 मई 2026 को आयोजित हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
3: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट। मैं हूँ जूही राव। हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट इस विषय पर आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में यह रिपोर्ट प्रस्तुत है। श्रोताओं, वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश में लू यानी हीट वेव का दौर जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संस्थान यूनिसेफ मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी अंतर्गत विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ में लू आपदा प्रबंधन यानी हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट विषय कार्यशाला का आयोजन कल 8 मई को आपदा प्रबंधन संस्थान के सभा कक्ष में किया गया। इसके बारे में अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं संयुक्त संचालक आपदा प्रबंधन संस्थान डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ।
4: आज आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल और बाकी हमारा जितना भी पार्टनर्स है उनके साथ मिलके हमने एक वर्कशॉप हीट वेव के ऊपर ऑर्गेनाइज किया है। उसका मेन उद्देश्य ये हीट वेव के बारे में लोगों को बताना है, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट का ऑफिसेस है, NGO से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सबको इसके बारे में बताना है कैसे मैनेज करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। और इस संदर्भ में हमने जो अवेयरनेस का रूप से भी और साथ साथ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेशर्स है, ये सारे इश्यूज के बारे में बात किया। लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स जो डिपार्टमेंट से, NGO से, ये सब इसमें जोड़ा है। और हमने IMD और हमारा जो SDMA है, यूनिसेफ है, रोटरी क्लब है, उनका सब साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम किए हैं।
5: सर, कुछ खास बातें जो निकल के आई हूँ इस वर्कशॉप में?
4: इसमें बेसिकली जो हीट वेव में हमको क्या करना क्या नहीं करना है, स्पेशली सफिशिएंट मात्रा में पीने का और बहुत धूप में नहीं बाहर निकलने का, और स्पेशली हमारे जो सबसे संवेदनशील लोग हैं, जैसे बच्चा है, बुजुर्ग है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो ओपन एरिया में जो काम करने वाला हमारा एग्रीकल्चर लेबरर्स है, जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करने वाले, उन सबको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए ताकि इस लू से वो प्रभावित ना हो।
5: सर, हीट वेव जो है वो डिजास्टर कब बन जाता है?
4: हीट वेव जब ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होता है और उसमें कैशुअलिटी है, इंजरी है, सब ज़्यादा होता है, तब ये डिजास्टर का रूप लेता है। हीट वेव एक हजार्ड है, जब जो संवेदनशील लोग है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है तब ये एक डिजास्टर का रूप लेता है। एक्चुअली आपदा प्रबंधन सबका बिजनेस है। हमारा देश में आपदा प्रबंधन के लिए अलग अलग प्राधिकरण बनाया हुआ है। राष्ट्रीय लेवल में राष्ट्रीय प्राधिकरण है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में है, और राज्य का लेवल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है CM साहब का नेतृत्व में, और सिमिलरली जिला लेवल में एक जिला प्राधिकरण है जो कलेक्टर का नेतृत्व में, और स्थानीय लेवल में जैसा ग्राम पंचायत है, नगर पालिका लेवल है, उसमें स्थानीय प्राधिकरण के, तो उनका काम है जो ये अलग अलग डिजास्टर का प्रिकॉशन निवारण और इवन पूर्व तैयारी और अनुक्रिया इफेक्टिवली करने का। तो हमारे देश में ये आपदा प्रबंधन का एक्ट बनाया हुआ, अधिनियम बनाया हुआ है, उसका अंतर्गत अलग अलग एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, तो वो सारा एजेंसीज भी हमने कोशिश किया इसमें इन्वॉल्व करने का।
3: श्रोताओं, इस कार्यशाला में मौसम विभाग का प्रतिनिधित्व किया मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के जरिए सभी प्रतिभागियों को हीट वेव के बारे में समझाया।
6: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या, मैं मौसम विभाग में काम करती हूँ, मौसम वैज्ञानिक हूँ। आज हम DMI में एक वर्कशॉप के लिए आया, हीट वेव के बारे में वर्कशॉप था। तो मेनली हमारे साइड से हम IMD कैसे हीट वेव को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उसके लिए फोरकास्ट और चेतावनी कैसे जारी करते हैं, उसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन दिए थे। साथ साथ बाकी सेक्टर से भी लोग थे, आर्किटेक्चर, हेल्थ और एग्रीकल्चर, तो सब लोगों ने भी उनका इनपुट दिया। और ये ऑनगोइंग हीट वेव कंडीशंस में कैसे मतलब टोटल एक्शंस लेना, उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ था।
5: तो मैम, अभी आने वाले समय के लिए आप हीट वेव के लिए क्या आप अनुमान लगाते हैं?
6: अभी का कंडीशन में लास्ट कुछ दिन से टेम्परेचर काफ़ी नीचे चल रहे हैं हमारे रीजन में, बट अभी जो बारिश देने वाले सिस्टम आज और कल के बाद कम हो जाएगा, तो तीसरे दिन से प्रदेश में टेम्परेचर अभी आने वाले दिनों में बढ़ने का चांसेस है। अभी हमने हीट वेव का वार्निंग इश्यू नहीं किया, बट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तीसरे 14 दिन से प्रदेश में फिर से टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का चांसेस है।
5: और फिर ऐसे में लोगों को और खासतौर से किसानों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए?
6: हाँ, हीट वेव के टाइम में मेनली यही प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, मेनली वो जो ज़्यादा हीट जब रहते हैं, जैसे 12 बजे से 4 बजे के बीच के वो टाइम में बाहर जाना मैक्सिमम अवॉइड करना है। जा रहे तो भी आप प्रिकॉशंस के साथ छाता वगैरह यूज़ करके जाना है, और ये टाइम में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो पानी, ORS, नींबू पानी, तो जो भी मतलब बॉडी हाइड्रेट करते हैं उसी टाइप का मतलब ये लेना है, ड्रिंक्स लेना है। और खाना भी हल्का खाना, और कपड़े में भी हल्का कपड़ा, लाइट कलर का कपड़ा, कॉटन और लिनन का कपड़ा, वो सब यूज़ करने से अच्छा रहेगा, मतलब हीट से हम बीट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार में किसी को कुछ हीट स्ट्रोक कंडीशंस महसूस हो रहे हैं तो उनको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प देना ज़रूरी है।
3: इस कार्यशाला के बारे में यूनिसेफ मध्य प्रदेश से अपनी बात रख रहे हैं
7: अनिल गुलाटी, यूनिसेफ संचार विशेषज्ञ और DRR फोकल पॉइंट। आज डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एक वर्कशॉप की है जिसमें हीट वेव का टॉपिक था। यूनिसेफ के लिए बहुत अहम है क्योंकि यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है सरकार के साथ मिलकर, तो बच्चों का वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है हीट वेव में, चाहे वो उनके चैलेंजेस हों, और सिमिलरली महिलाओं का। तो आज हमने यूनिसेफ ने प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कि पानी ज़्यादा पियो, दिक्कत आए तो ORS लीजिए, ढक के जाइए, 12 से 4 के बीच में मत निकलिए, अगर बच्चे हैं तो उनका खास ख्याल रखिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो ORS लीजिए, खासकर पानी में डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके, और कोशिश करिए कि कवर्ड एरियाज में रहें। तो इस चर्चा का इंपॉर्टेंस ये है ताकि ये जानकारी जन जन तक दे सके। इसके अलावा IMD और SDMA ने भी आज एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें माध्यम से बताया कि हीट वेव के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और कब तक हीट वेव का इम्पैक्ट रहेगा।
5: सर, जो खास जो कुछ बीमारियां रहती हैं उससे पीड़ित लोगों को भी इसमें दिक्कत होती है, तो उसके बारे में?
7: जी बिल्कुल, वनरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हाई ब्लड प्रेशर या जिनको डायबिटीज़ वगैरह है उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ती है, और जो बूढ़े लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, खास करके उन लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, जो बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, जो एडमिटेड हैं, उनका खास ख्याल रखें। और जैसे आपको लगे कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं हीट स्ट्रोक के, कि आपकी स्वेटिंग खत्म हो गई हो या टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लें।
3: श्रोताओं, इस कार्यशाला में यह भी बताया गया कि ग्रीन बिल्डिंग के जरिए हीट वेव के असर को कम किया जा सकता है। इस बात को प्रेजेंटेशन के जरिए सभी उपस्थित प्रतिभागियों को समझाया।
8: मेरा नाम अदिति काश्यप है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, और मैंने अपना मास्टर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में किया है, जिसमें कि हम ग्रीन बिल्डिंग्स जो कहते हैं उस पर काम करते हैं, कि एनर्जीज को हम कैसे रिड्यूस करें और आगे जाके आने वाले टाइम में हम कैसे थर्मल कम्फर्ट को प्रोटेक्ट करें एक तरीके से, उस पर काम करेंगे।
5: तो DMI के द्वारा जो यहाँ पे आयोजित किया गया था वर्कशॉप, इसमें आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो उसके बारे में बताएं।
8: जी, आज हमने जो प्रेजेंटेशन पे बात करी है उसमें ये बात करी थी कि हम हीट वेव से कैसे बचें, क्योंकि हम एक कॉम्पोजिट क्लाइमेट में भोपाल में रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बिल्डिंग में हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, हम तरीके से हीट वेव्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर हमने बात करी थी, जिसपे हम बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उसमें फ्लैट रूफ्स होती हैं, तो उस पर हम एक कूल रूफ पेंट आता है, वाइट कलर का पेंट होता है, उसको आप ज़रूर करिए अपने घरों में, तो उससे वाटरप्रूफिंग भी होगी, प्लस आपका 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर भी आपका कम हो जाएगा। प्लस हम खस से बने हुए पर्दे लगा सकते हैं, उस पर आप 2-4 बार पानी छिड़किए, ऑटोमेटिक आपका बाहर से जो हवा आ रही है वो ठंडी होकर घर में आएगी। छोटी छोटी ओपनिंग्स दे सकते हैं घर में, जाली वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम एक स्पेस ऐसा बना सकें जहाँ पे ठंडी हवा आती रहे, प्लस ज़रूरी यह है कि हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पास होती रहे हर एक जगह से, भले ही वो छोटी खिड़की हो, बड़ी खिड़की हो, जैसा भी हो, उस चीज़ का ध्यान हम हमेशा रखें। इस चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था।
3: अब मैम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, पर अगर कोई स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए?
8: जी, तो हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारी खिड़कियाँ किस साइज़ की बनी है, किस डायरेक्शन में बनी है, तो हम उस पर, अगर हमारे पास छज्जा नहीं बना है तो हम उस पर कितना छज्जा बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। तो वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए एक नई खिड़की भी दे सकते हैं। नॉर्मल फ़ैन यूज़ करेंगे तो उससे भी है कि हवा पूरी पास होती रहे, फ़ैन चलता रहे, तो भी आपका नेचुरल वेंटिलेशन बना रहेगा। छत पे कूल रूफ कोटिंग करनी चाहिए, पेंट करना चाहिए, जिससे कि अंदर 2-3 डिग्री का टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह से हम रूफ गार्डन या छत पे छोटे छोटे पौधे लगा के उधर जो हीट को वो ट्रैप कर रहे हैं उसको हम कम कर सकें, ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं काफ़ी सारे। हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इस टाइप के इक्विपमेंट बना रहा है जिसमें कम से कम एनर्जी यूज़ हो बट हमें पूरा फ़ायदा मिले। तो आजकल गवर्नमेंट ने एक और चीज़ कर दी है कि हम एसी का टेम्परेचर पहले 16 डिग्री तक दे देते थे, पर अब वो 18 से 24 या 24 डिग्री तक ही दे रहे हैं ताकि हम मिनिमम यूटिलाइज करें, अपना कम्फर्ट मिलता रहे हमें उस टाइम पीरियड में, और हम एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो इस टाइप के हम इक्विपमेंट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि नेचुरली जितनी चीज़ें हो सके वो करें। अगर हम एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कितने पेड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हम बचा सकते हैं अपने घर के लिए। तो हम, हो सकता है एक बड़ा पेड़ है उसको हम अपने घर के कोर्टयार्ड में ले लें, किसी बिल्डिंग के बीच में ले सकते हैं। तो जैसे कि हम वास्तु को लेकर बोलते हैं कि पूरब की तरफ से एंट्री होनी चाहिए या उत्तर की तरफ से ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पहले क्लाइमेट को देखकर ही बोली गई थी, उस चीज़ से रिलेटेड हम आज भी फॉलो कर सकते हैं चीज़ डिज़ाइन में।
3: इस प्रकार इस एक दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ जिसमें लू आपदा प्रबंधन विषयक मुद्दों पर चर्चा की गई और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के द्वारा सहभागिता की गई। इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को संपन्न करते हैं। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा 8 मई 2026 को आयोजित हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, फिल्म संकेत। कार्यक्रम का आरंभ मोहम्मद रफी के गाय गीत से, राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने और फिल्म है

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।

0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप
4: क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भेरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले में सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 मई से 20 मई तक भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है विशेष भेंट वार्ता। इसमें सुनिए आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग दो। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान विषय पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से बातचीत कर रहे हैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्षों की कालजयी यात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की आज की कड़ी में आज हम फिर आपके साथ हैं, आपके रूबरू हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, लेखक, सरस्वती पुत्र और संप्रति मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे सर।
2: सर नमस्कार, आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं और इसलिए आज एक प्रकार से दोनों ही क्षेत्रों के सेतु के रूप में आप और हम बैठे हैं। बहुत आनंद रहेगा आज की बातचीत में।
1: सर, हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वर्ष 1923 में मुंबई और कोलकाता के प्राइवेट रेडियो क्लब के द्वारा प्रसारण की शुरुआत की गई थी हमारे देश में, और 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी और 1930 में उसका कार्यभार इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया। लेकिन तब तक ये नियमित प्रसारण नहीं था रेडियो का, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रसारण करते थे
2: जी।
1: 1935 में जब बीबीसी के लियोनेल फील्डन को भारत का कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया, उन्होंने पहल की और जो आज आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो जिस स्वरूप में है उसका बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। और इस कड़ी में 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो हुआ। 8 जून 1936 के ऐतिहासिक दिन ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण की शुरुआत हुई और यही ऑल इंडिया रेडियो 1956 में इसका नामकरण आकाशवाणी हुआ। और सर, इसके नामकरण के पीछे भी एक कहानी है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1939 में कोलकाता में HPT का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने कविता पढ़ी, उस कविता में आकाशवाणी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और 1956 में जब पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने उस पंक्ति का संदर्भ लेकर के प्रयास किया कि हमारी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपने देश की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो उन्होंने आकाशवाणी शब्द को प्रपोज किया था और 1956 में आकाशवाणी शब्द हमें मिला और तब से ये कालजयी यात्रा जारी है।
2: यानी इसका मतलब ये हुआ कि आकाशवाणी के नामकरण की भी जो छोटी सी यात्रा है, यानी ये पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है। हालांकि आकाशवाणी का इतिहास तो पढ़ते रहे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आज मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को भी ध्यान में आएगी कि इसके पीछे एक भाषाई स्वाभिमान और भाषाई शुचिता का प्रश्न भी हल हो रहा है इस नामकरण के साथ
1: जी। हम सभी जानते हैं रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है।
2: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और विशेष करके आकाशवाणी के जिस इतिवृत्त को आपने अभी हम सबके साथ बांटा, वास्तव में मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और मुझे कहने में कभी संकोच भी नहीं होता बल्कि गर्व की अनुभूति होती है कि मैं मालवा क्षेत्र के ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से एक ऐसे ग्राम से आता हूँ जिसकी आज भी जनसंख्या मुझे लगता है 5,000 के लगभग होगी, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और उतने छोटे से ग्राम से निकल करके आए हुए हम लोग जब क्रमशः हमारी यात्रा कस्बों तक पहुंची, महानगरों तक पहुंची, तो जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे उस युग में ऐसा लगा करता था कि चूंकि सत्यनारायण कथा घर घर में होती थी और उसके एक घटनाक्रम में आता है उल्लेख कि वो जब जामाता की नाव डूबती है और फिर आकाशवाणी होती है
1: जी।
2: तो मुझे कई बार लगता था कि आकाशवाणी शब्द संभवतः पौराणिक काल का शब्द है, लेकिन वास्तव में ये स्वाभाविक है कि तकनीकी रूप से भी जिस ढंग से आकाशवाणी शब्द सार्थक सिद्ध होता है हमारी इस रेडियो विधा के लिए, वो अपने आप में बड़ा आनंददायक है। और आज का संदर्भ तो आपने जो दिया है वो तो और अद्भुत है। आपने एक बहुत अच्छा संदर्भ दिया है। इस मामले में मैं चाहता हूँ कि अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। हम सब जानते हैं कि उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, और जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
1: जी,
2: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भावभंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
2: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में जो एक समय पूरा का पूरा, जिसको हम गुलामी का काल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने। मैं कई बार सोचता हूँ, हमारी उम्र के लोगों ने अनुभव किया, आप चूंकि मैं भी 60 की ओर बढ़ रहा हूँ तो मैंने इस बात को अनुभव किया कि जब हम प्रामाणिकता को देखना चाहते थे किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, एक बार अपने कक्षा में, हिंदी की कक्षा में अपने अध्यापक को मैंने चुनौती देकर के कह दिया कि आप ये जो वाक्य बोल रहे हैं ये कर्ता क्रिया कर्म के मूल सिद्धांत के विपरीत है। तो बड़े नाराज हुए, पुराना युग था, उन्होंने कहा तुम बच्चे होकर के इस तरह की बात कर रहे हो। तो संयोग ऐसा था कि मैंने उनको कहा कि मैंने आज ही आकाशवाणी पर सुना है ये वाक्य इस ढंग से, और आप आश्चर्य करेंगे कि हिंदी के अध्यापक ने बगैर अपने आत्मसम्मान की कोई हानि अनुभव करते हुए उन्होंने कहा अच्छा आकाशवाणी पर सुना है तब तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि किसी भी माध्यम की इससे अधिक लोक प्रामाणिकता ये अपने आप में गर्व की बात है
1: जी।
2: और साहित्य को भी निश्चित तौर पर ये प्रामाणिकता और ये सब कुछ प्राप्त हुआ है आकाशवाणी के माध्यम से।
1: सर, साहित्य को आम आदमी से जोड़ने में रेडियो ने अहम भूमिका निभाई है
2: जी।
1: अभी आपने कहा भी है, साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुँचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। इसने लेखकों को सिखाया है कि कम और प्रभावी शब्दों में संप्रेषण कैसे किया जाए, जो रेडियो का एक सशक्त पक्ष है जी। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना चाहेंगे।
2: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
2: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी।
2: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
1: जी।
2: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
1: जी।
2: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है
1: जी।
2: और कई बार तो मैं ये भी अनुभव करता हूँ कि जैसे कविता लेखन की कुछ कार्यशालाओं में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता था, बच्चों की कार्यशालाओं में भी जाता था और बड़े साहित्यकार की कार्यशाला में भी, तो कुछ कुछ हमारी बनी बनाई धारणाएं कैसे ध्वस्त होती है एक छोटे से उपक्रम से। उसका एक अच्छा सा उदाहरण मुझे अभी अनायास याद आया। होता यूं है कि काव्य के जगत में, चूंकि आप भी साहित्य के निकट हैं तो आपको पता होगा कि तुकबंदी शब्द को बड़े हीनता बोध के साथ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई छंद शास्त्र में जो व्यक्ति कविता लिखता है तो अगर किसी ने थोड़ा सा निम्न स्तर की कविता लिखी तो अरे क्या तुकबंदी कर दी तुमने ऐसा। लेकिन एक बार मैंने ऐसा किया कि आकाशवाणी की एक रिकॉर्डिंग लेकर के मैं ऐसी एक कार्यशाला में पहुंचा, मोबाइल पर मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ था। और मजेदार बात यह थी कि मैंने बगैर नाम लिए मैंने कहा कि देखिए आप सब लोग अच्छा, चूंकि मेरे से पूर्व के वक्ता लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि आजकल लोग तुकबंदी में लगे हैं, तुकबंदी में लगे हैं। मैंने कहा मैं आपको एक मूल स्वर सुना रहा हूँ, इस मूल स्वर को पहचानने का प्रयास करिए। और आप आश्चर्य करेंगे, आकाशवाणी के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में ये कहा गया था कि आज आकाशवाणी के इस पटल से मैं आपके सामने एक तुकबंदी प्रस्तुत कर रहा हूँ
1: जी।
2: और उसके बाद जो रचना प्रारंभ हुई वह थी, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक, और वो स्वर था दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का
1: जी।
2: मैंने कहा जब माखनलाल चतुर्वेदी जी आकाशवाणी जैसे माध्यम पर यह शब्द प्रयोग करते हैं और वे अपनी सबसे अमर रचना को तुकबंदी कहते हैं, तो आप और हम ये मानने वाले लोग कौन है जो तुकबंदी को निम्न स्तर का मानते हैं। ऐसा कहकर के जब बात रखी तो जैसा मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया अध्यापक वाले प्रसंग में, वैसा ही साहित्य जगत के सब लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि अब कम से कम आने वाले समय में हम, चूंकि तुकबंदी कविता का मूलभूत गुण होता है, तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में, साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी सर, रेडियो ने साहित्य को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। पहले जो शिक्षित वर्ग तक, एक खास समूह तक जो केंद्रित था साहित्यिक अवदान, वो वहाँ से हटकर अब आम जन तक पहुँचा है। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुँच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा और विशिष्ट वर्ग तक सीमित होने से बचाया है?
2: निश्चित बात है, ये तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। और मेरे घर में विधिवत वो लाइसेंस रहा, बकायदा जा करके शासकीय कार्यालय में एक रेवेन्यू टिकट लगवा करके, सील लगवा करके एक वर्ष के लिए उसको रिन्यूअल करवाना होता था, नवीनीकरण करवाना होता था। तो मुझे लगता है कि ऐसी धारणा प्रारंभ में रही होगी, लेकिन मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूँ मैं इसको, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना। आज कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुँचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है, तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है, और इसलिए मैं इसके लिए तो विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 90 वर्ष की इस यात्रा में इस पक्ष पर मुझे लगता है कि जो इन दिनों पत्रकारिता के शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों को कुछ शोध कार्य संपन्न करना चाहिए कि कैसे एक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आकाशवाणी उस अभिजात्य वर्ग के शोध निष्कर्षों को भी पहुँचाने में सफल हो पाई है।
1: जी, ज्ञान सूचना मनोरंजन का जो ये त्रिवेणी है
2: जी,
1: और जिस पोर्टेबल माध्यम से, जिस सरल तरीके से आम आदमी तक पहुँचती है, उसमें रेडियो का शायद कोई दूसरा पैरेलल नहीं होता है। ध्वनि का माध्यम साहित्य को जीवित संवाद के रूप में बदल देता है। केवल ध्वनि ही होती है जो आपके शब्दों को जीवन प्रदान करती है।
2: सच है।
1: और हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
2: अभी माखन दादा को हम स्मरण कर ही रहे थे, और इसके अतिरिक्त भी उस युग के साहित्यकारों को भी अगर हम देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। मुझे याद आता है कि अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक किसी कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, ये स्वरबद्ध करने का काम उनके पुत्र ने पहली बार किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी तो जिस ढंग से आकाशवाणी से जुड़े थे, तो जिन लोगों ने पहले किया वो भी उनके लिए पुत्रवत थे, और ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इस ढंग से उन्होंने बड़ी आत्मीयता से स्मरण किया था। मुझे लगता है कि इन सब साहित्यकारों को पहचान देने का काम जो हुआ, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है। यानी मैं अपने स्वयं की भी अगर चर्चा करूँ तो मैं चूँकि बाल साहित्य क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहा 4 दशक तक, और बाल सभा के कार्यक्रमों में 30 वर्ष से अधिक मुझे हुआ है। बाल मैं इससे पहले खेती गृहस्थी वाले कार्यक्रमों में भी वार्ता के लिए जाता रहा, यहाँ तक कि बहनों के कार्यक्रम में भी मैंने कई बार वार्ताएं ली, लेकिन मेरा जो मूल रुचि का विषय था बाल सभा। उस बाल सभा में मैं जब एक युग में मुझे याद है कि जब लाइव हुआ करते थे, बच्चों के साथ बैठा करते थे, तो उस युग को स्मरण करके मुझे आज भी लगता है कि सचमुच वो एक ऐसी कार्यशाला हुआ करती थी। उस युग में वो जो छोटे छोटे से बच्चे बैठा करते थे 7-8 साल के 10 साल के, और उन बच्चों से जब मैं बातचीत करता था और उनसे कविताएं सुनता था, कभी मैं कहानियां सुनाता था, मुझे लगता है कि आज निश्चित तौर पर यदि हम एक शोध कार्य संपन्न करें तो आकाशवाणी की बाल सभा में आए हुए उन बच्चों में से 90% बच्चे साहित्यिक अभिरुचि वाले रहे होंगे अपने भावी जीवन में। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। साहित्य जगत में केवल लेखक तैयार कर देना ये बड़ी बात नहीं है, लिखने वाले इन दिनों हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में, लेकिन अच्छे पाठक तैयार करने का काम आकाशवाणी ने किया, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवदान है। मैं इसको कई बार प्रतीक रूप में ऐसा भी कहता हूँ कि पारस पत्थर का गुण होता है कि वो लोहे से सोना बनाता है, ये तो एक सामान्य बात है जहाँ पारस पत्थर होगा, लेकिन पारस पत्थर का मूल काम क्या है? उसका काम है अपने जैसे और पारस पत्थर तैयार करना, और इसलिए आकाशवाणी एक बहुत अच्छी श्रोता भी है। वो जब वक्ता के रूप में साहित्यकारों को बुलाती है, कवियों को बुला करके उनकी कविताएं सुनती है, और वो हम लोग कई बार मजाक में सोचते हैं कि हिंदी के मुहावरों में कि एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, ये भले ही हास्यास्पद माना जाता होगा, लेकिन आकाशवाणी के संदर्भ में मैं सोचता हूँ कि आकाशवाणी का जो तंत्र है, इसकी जो तकनीकी है, वो एक कान से सुन करके करोड़ों कानों तक पहुँचा देती है। मुझे लगता है कि ये आकाशवाणी की सार्थकता है।
1: जी, जैसा हम सभी जानते हैं आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
2: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये दिग्गजों ने, साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
2: सचमुच आपने जिन पुरोधाओं के नाम लिए, अखिल भारतीय स्तर पर तो ये हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी मैं कहूँ तो चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियाँ थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुँचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियाँ पढ़ना प्रारंभ की, हमारे यहाँ आकाशवाणी से कहानी का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आया करता था, और उसमें आकाशवाणी ने तो 90 वर्ष की यात्रा में इतने नवाचार किए, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा था कि कोई भी लेखक एक कहानी लिख करके भेजते थे और उस कहानी की उस पूरे कथानक से जुड़े हुए, उसके भावों से जोड़ते हुए बीच में गीत का मुकड़ा और एक पद आ जाता था, या कभी कभी पूरा गीत भी आता था और वो गीतों भरी कहानी तैयार हो जाती थी। ऐसे कई प्रयोग किए गए। मुझे लगता है कि ये जो नवाचार हुए, इसके अतिरिक्त जो विधाएं साहित्य क्षेत्र में लगभग अल्प प्रचलित विधाएं कही जाती थी, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। मुझे याद है कि रेखा चित्र और संस्मरण इनको लेकर के अब पर्याप्त काम होने लगा है। इन दिनों हमारी जो बातचीत के भी जितने कार्यक्रम होते हैं, तो चाहे वे हार्ट सर्जन आ रहे हैं, चाहे वे कोई कलाकार आ रहे हैं, रंगकर्मी आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, लेकिन वे जब अपने जीवन के पिछले घटनाक्रम में गोते लगाते हैं तो ऐसा एक चित्र खड़ा हो जाता है हमारी आंखों के सामने कि लगता है कि साहित्य का जो रेखा चित्र विधा का जो स्वरूप है उसको ठीक से समझना है तो आकाशवाणी से सीखा जा सकता है।
1: जी, आपका ये साहित्यिक सफर और आकाशवाणी, हम साथ साथ चले हैं और काफ़ी लंबा साथ रहा है आपका आकाशवाणी के साथ। सर, कुछ उस दौरान कुछ आपकी स्मृतियों में ऐसी बात हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
2: सचमुच इतनी स्मृतियां हैं कि एकाध बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि केवल आकाशवाणी से जुड़ी स्मृतियों को आधार बना करके एक पूरा संस्मरण का संग्रह तैयार कर सकता हूँ। लेकिन आकाशवाणी को लेकर के जो सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, वो मैं ज़रूर आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि आकाशवाणी एक एक मनुष्य के हृदय पर कैसा प्रभाव छोड़ती है। हुआ ऐसा कि एक बार मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था आकाशवाणी के द्वारा और विषय दिया गया था ध्वनि प्रदूषण। तो मुझे लगा कि मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ और ये बड़ा तकनीकी प्रकार का विषय है, तो मैंने कहा ये गलती से तो आपने नहीं दे दिया मुझे। उन्होंने कहा नहीं, आप तैयार करके और इसको ठीक ढंग से तथ्य और प्रमाणों के साथ रखिए तो हमारे श्रोताओं को इसका लाभ मिलेगा
1: साहित्यकार तो, के नजरिए से।
2: हाँ, हाँ, तो मैंने उस पर एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार की और वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर, आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे जीवन में संभवतः पहली और आखिरी बार मैंने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के इतना पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आया कि हम जिस जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को लेकर के इतने चिंतित हैं, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के इतने चिंतित हैं, उससे कहीं ज़्यादा घातक ध्वनि प्रदूषण भारतीयों के लिए है। जिस ढंग से हम हॉर्न बजा रहे हैं, चिमनियों से सायरन की आवाज़ें निकल रही है, ये सब, और उसका प्रभाव नवजात शिशुओं पर, और तब तो वो युग था कि अस्पतालों के बाहर हॉर्न नहीं बजाने की सूचनाएं तक नहीं होती थी और हमको पता ही नहीं कि कितने मरीजों की शायद मृत्यु हो गई हो इतने तीव्र हॉर्न सुन करके। और ये सब तो हुआ यूं कि वो वार्ता करके मैं जब निकल रहा था तो मेरे पास एक छोटी सी स्कूटी हुआ करती थी, तो आकाशवाणी के द्वार से बाहर निकलते हुए सामने से एक वाहन गुजरा और मैंने अपनी आदत के अनुसार एकदम से अंगूठा हॉर्न पर दबाने वाला था और फिर मुझे लगा कि मैं आकाशवाणी की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मैंने जिस पटल से ध्वनि प्रदूषण को लेकर इतनी बातें कही आधे घंटे में और मैं खुद इतना हॉर्न बजाता हूँ, तो मैंने तत्क्षण एक संकल्प लिया कि अब भविष्य में मैं तभी हॉर्न बजाऊंगा जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है और मैं भावुक भी होता हूँ कि यह आकाशवाणी का पुण्य प्रताप है कि 23 वर्ष से मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया अपनी किसी गाड़ी का, एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। और मुझे लगता है कि ये जो मर्यादा मेरे जीवन में आई है, इस मर्यादा को देने का काम आकाशवाणी ने किया। और ये मुझे लगता है कि करोड़ों नागरिकों के मन में इस तरह का, आज हम जबकि पंच प्रण की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नागरिक कर्तव्य को लेकर के हमको विचार करना है, ये नागरिक कर्तव्य का बोध मुझे आकाशवाणी ने दिया है। जी
1: सर, अब आज के वर्तमान परिदृश्य में आते हैं। आज का जो डिजिटल युग है, पॉडकास्ट हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये साहित्य के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है, और आकाशवाणी की भूमिका ऐसे परिदृश्य में आप किस तरह से आंकते हैं?
2: वास्तव में पॉडकास्ट के साथ दृश्य भी जुड़े हुए हैं, चूँकि इन दिनों लगातार अंतरताने का उपयोग करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वायरल होने का एक शौक सा सवार है साहित्यकारों पर भी और सामान्य जन पर भी। लेकिन इस रील और बाकी सारे जो दृश्य माध्यम हैं इनसे परे जा करके हम सोचें तो आकाशवाणी के समानांतर अगर कोई नवाचार हुआ है ध्वनि माध्यमों में, तो वो हुआ है कथाओं को, साहित्य को ध्वनि मुद्रण के रूप में अंकित करना और उनको सुनना। मेरे एक शिष्य हैं जिनको मैंने कभी स्कूल टाइम में पढ़ाया हुआ था, तो वो इन दिनों पुणे और मुंबई प्रतिदिन आना जाना करते हैं, प्रतिदिन उनका आना जाना होता है, एक दिन आते हैं दूसरे दिन जाते हैं, इस प्रकार से उनका व्यावसायिक काम होने के कारण से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी आप मुझे बताइए कि मैं क्या पढ़ूं, नया क्या पढ़ूं। तो मैंने कहा तुम आईटी प्रोफेशनल हो और इसमें तुमको समय मिलता है क्या पढ़ने का? उसने बड़ी तेज़ी से मुझे कुछ इतनी अच्छी साहित्यिक कृतियों के नाम बताए, यानी उसमें शिवाजी सावंत का छावा भी था और शेष और शिवानी के कुछ उपन्यास। तो मैंने कहा तुमने ये कब पढ़ लिया? तो उसने बताया कि मैं कार से मुंबई और पुणे के बीच एक्सप्रेस वे पर जब चलता हूँ तो मेरा वो जो रेडियो है वो चालू करके और उस पर मैं वो ध्वनि अंकित जो उपन्यास हैं या जो कहानी संग्रह हैं उन सबको मैं सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी तो इस काम को तकनीकी के इस नवीन आविष्कारों से बहुत पहले से करता आ रहा है। और आकाशवाणी चूंकि सुलभ है, इन दिनों विविध भारती के माध्यम से हम जब से FM पर आए हैं तब से तो ये सुलभता इतनी बड़ी है और उसकी जो गुणवत्ता है वो इतनी सुधरी है कि मुझे लगता है कि इन चीजों को लेकर के आकाशवाणी का कोई विकल्प तो कभी नहीं हो सकता।

0: ये और ये भी मैं अनुभव करता हूं कि आकाशवाणी ने आज तक इस प्रकार के समान धर्मी माध्यमों से कभी अपनी प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता नहीं बताई। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे एक बड़े भाई का धैर्य, एक पिता का त्याग जिस तरीके से हमको परिवार में दिखता है, ठीक उस भूमिका में मुझे इन सब नवीन माध्यमों में आकाशवाणी दिखती है। तो
1: नए
0: वो अपना
1: माध्यम
0: काम लगातार करती
1: जी
0: चली जा रही है।
1: और
0: तो
1: नए माध्यमों को भी, जो संचार के माध्यम हैं, पल्लवन के लिए इनके विकास में भी पूरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रही है आकाशवाणी।
0: बिल्कुल।
1: बदलते परिवेश में आकाशवाणी से आप क्या और अपेक्षाएं रखते हैं, क्या होना चाहिए
0: मुझे
1: जो
0: लग रहा है
1: कुछ चेंज
0: कि
1: के तौर पर अगर
0: जी
1: हम
0: जी जी मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अपेक्षा मुझे थी आकाशवाणी से, लेकिन वो थी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: थी ही, अब है नहीं।
1: जी जी
0: इसलिए नहीं है क्योंकि आकाशवाणी ने मेरी उस अपेक्षा को पूरा कर दिया है। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है,
1: जी
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
1: जी
0: चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। तो मुझे कई बार लगता था कि ये इतना बड़ा ज्ञान का खजाना है, ईश्वर न करे कभी कोई ऐसा ऊंचा नीचा हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रकोप भी होते रहते हैं, कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी फटते हैं, कहीं ये सब नष्ट हो गया तो क्या होगा? इसको रूपांतरित होकर के कहीं किसी कालपात्र में रखा जा सकता है क्या ऐसी सामग्री को? और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊँ और अपनी रुचि की सामग्रियों को सामान्य जन, ये बात मैं विशेष रूप से इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे श्रोताओं में से संभवतः इंटरनेट का उपयोग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो आर्काइव सबके लिए खोल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: जी, धर्मवीर भारती ने कहा था कि रेडियो की अपनी विशिष्ट भाषा होती है, जिसे हम कहते हैं ध्वनि की कविता। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ मौन भी उतना ही मुखर होता है जितना ध्वनि होती है।
0: बिल्कुल।
1: चलते चलते हमारे सुधी श्रोताओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहें।
0: निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से, चूंकि आप इस वार्ता को सुन रहे हैं इसका अर्थ आप आकाशवाणी से जुड़े ही हैं, लेकिन इस परिवार से जुड़े रहें और लगातार आकाशवाणी, चूंकि इतने वर्षों से हम सब लोगों के लिए इतने प्रकार की सामग्री परोस रहा है कि वो आज आप देखिए कि चाहे वो जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के हम वर्ग कहते हैं लैंगिक दृष्टि से, माताओं बहनों के लिए अलग कार्यक्रम आ रहे हैं, बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम आ रहे हैं, पुरुषों के निमित्त अलग से आ रहे हैं, प्रोफेशनल दृष्टि से भी देखें जिनकी अलग अलग वृत्ति है उन लोगों के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम आ रहे हैं, समाज का कोई भी वर्ग आकाशवाणी से, प्रसार भारती से अछूता नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको हम अनुभव करें और इस परिवार का हिस्सा बन करके रहें। मुझे एक ही शब्द इस समय याद आ रहा है और वो है कि अंगांगी भाव शब्द प्रयोग करते हैं हम। अंगांगी भाव ये होता है कि अगर हाथ में कोई सुई चुभाता है तो सीधे मस्तिष्क पर जाकर के उसका प्रभाव पड़ता है और हमको लगता है कि दर्द हो रहा है। तो आकाशवाणी चिरजीवी हो, मृत्युंजयी हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, और ये काम केवल हमारे श्रोता कर सकते हैं, हम सब मिल करके कर सकते हैं।
1: हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी और साहित्य का संबंध केवल ध्वनि और शब्दों का संबंध नहीं है, बल्कि संस्कृति और समाज की आत्मा का परस्पर संवाद है।
0: निश्चित।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों की यह गौरवमयी यात्रा वास्तव में भारतीय साहित्य और जनमानस की साझा स्मृति का जीवंत दस्तावेज है। आदरणीय डॉक्टर विकास दवे सर, आप कार्यक्रम में पधारे और इतना ज्ञानवर्धक संवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी विशेष भेंट वार्ता। इसमें आप सुन रहे थे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरव

वाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग दो। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान विषय पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से बातचीत कर रहे थे चंद्रशेखर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को सुरों में पिरोया है आरडी वर्मन ने और फिल्म का नाम है हीरा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगली पेशकश दहलीज फिल्म का गीत। हसन कमाल के गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने। गायक स्वर आशा भोसले और

अभी आपने किशोर कुमार के स्वर में अंदाज फिल्म का गीत सुना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। फिल्म संगीत में अभी आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं हीरा पन्ना, धरती कहीं पुकार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
0: 8700001424।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में

0: है, जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, पेश है कार्यक्रम विवरण। पहले आज और कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के कार्यक्रम, रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत में 8:15 पर। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती। और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आप सुन सकेंगे राजकुमार मजुमदार से संतूर वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब एक नजर कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। फोन करें गीत सुने, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे। 12 बजे सुनिएगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत जादूगर को सलाम धारावाहिक की 11वीं कड़ी सुनी जा सकेगी 12:30 पर। 1 बजे सुनिएगा महिला कार्यक्रम, लोक संगीत का प्रसारण होगा 1:30 पर। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी सुना जा सकेगा 5:02 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। फिल्मी गीतों का लुत्फ उठाइएगा फिल्म संगीत में दिन में 2 बजे, शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30 पर। बच्चों का कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 2:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगा। सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8 बजे। 8:15 पर सुनिएगा डगर विकास की, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रस्तुति आकाशवाणी छिंदवाड़ा की होगी। आपकी फरमाइश, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे, इसमें आप सुनेंगे विद्वान श्री डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। अब सुनिए आज और कल आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के कार्यक्रम, 7:21 पर प्रसारित होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। और प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा 7:45 पर। एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण समय रहेगा 7:20। सुरमई सवेरा, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 से 8:58 तक और 9 बजे से 9:15 तक। 9:15 पर लोक संगीत में सुनिएगा पूर्णिमा चतुर्वेदी के गाए निमाड़ी लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान का प्रसारण होगा 9:30 पर। आकर्षण होंगे लोकचंद जनियानी की वार्ता, संत दादा चेला राम जी का जीवन और विचार, साथ ही आप सुनेंगे सिंधी गीत। 10 बजे प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी, सामुदायिक गान के अंतर्गत 10:05 पर आप सुन सकेंगे असामिया गीत का शिक्षण पाठ, रचना सतीश दास की होगी। चंद फिल्मी गीत सुनिएगा फिल्म संगीत में 10:30 पर। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत 7:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण होगा, जिसका विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजय अग्रवाल। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनः उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभाभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशीद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।
2: बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
0: 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए छिपरा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि
3: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है महाशिवरा के किनारे किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। कुल लगभग 200-200 मीटर पर हम लोग एंट्रीज बना रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे

0: कर ली है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मणिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
2: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले, अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन, कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगरमालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम
1: जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनों को धर्मू और संग में बैठी मीनाक्षी बहन आपको भी हमारी राम राम।
2: राम राम भैया। और बताओ आप कैसे हो भैया?
1: बस बहना आप जा समय देखो मौसम फिर से बदलने लगो है, यानी कि अब तो खूब आंधी तूफान पानी पर असर होता है ना, और ठंडक हो गई अति ऐसी कि जैसे कि बिल्कुल एकदम ठंड में हो। और जो गर्मी को महीना तो ऐसा लगा ही नहीं रहा तो ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है।
2: और कभी ये सही कह रहे
1: हैं। तो भैयाओ जा समय हम यही कहेंगे कि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो भैयाओ फिर अपाई लाने बरसात को मौसम कैसे आएगा।
2: सही कह रहे भैया।
1: जब गर्मी पड़त है तभी तो अपाई बादल घुमड़त है
2: और का
1: है ना, तो समुद्र में बासे उठत है और वो उठ के भैया ऊपर जाते हैं उनको पूरा तूफान और वो बना के पानी बन के और फिर बरसात है।
2: और कभी ये सही कह रहे हैं।
1: तो बहना हम आपसे यही कहेंगे कि जा समय भैया गर्मी को टेम है तो गर्मी पड़नी चाहिए और ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो हम ये कहेंगे कि जा समय हम अगर कहीं कोई अगर तैयारी कर रहे हैं बाग बगीचा लगावे की
2: और का?
1: तो भैया अपन है ना पहले से गड्ढा खोद के तैयार
2: कर लें। और का भैया सही कह रहे हैं।
1: और उन्हें भैया बामे अच्छी काली मिट्टी डालें, बामे खाद पानी डाल दें और बाद तैयार करके छोड़ दें।
2: और का
1: जैसे ही पानी बरसबो शुरू हो पहलो तैसे ही अपन बामे पौधरोपण कर दें।
2: और का भैया सही कह रहे हैं।
1: और बाकी सुरक्षा जरूर कर दें चारों तरफ से
2: और
1: बागड़ कर दें भैया जिससे कि अपाई पशु नहीं खा पाए।
2: और का
1: है ना
2: सही कह रहे भैया, नहीं तो अपन ने पेड़ लगा दे पशु खा गए तो कोई मतलब ही नहीं होगा।
1: तो इसलिए भैया हम यही कहेंगे और अपन को अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने हैं क्योंकि भैया पर्यावरण बचाने हैं। अगर अपने जीवन को बचाने हैं तो भैया पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगावो बहुत ही जरूरी है।
2: और कभी
1: जितेक अपन ज्यादा लगाएंगे उतने की पर्यावरण शुद्ध रहेगो और शुद्ध हवा मिलेगी। पर्यावरण शुद्ध होवे से अपन स्वास्थ्य भी अच्छो रहेगो
2: और
1: हरो भरो अच्छो लगाते। अब देखो जा समय देखो अब गर्मी शुरू हो रही है तो घाम जो दिन में पड़ाते तो अपन का देखाते हैं
2: भैया, घाम पड़ा था तो गर्मी लगा था और
1: तो पेड़ के नीचे अपन छाव
2: देखा ना। देखाते हैं और का
1: अपन जब भी कहीं अगर अपनी गाड़ी या अपनी साइकिल या पैदल चल रहे हैं तो अपन पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं या आराम कर लेते हैं भैया, या कोई बात कर रहे हैं या कोई मिल रहा तो आ जा पेड़ की छाव में नीचे खड़े होंगे।
2: और का
1: तो पेड़ की भैया ये अपने लाने बहुत ज्यादा, यानी कि अपन सीधे सूर्य की जो गर्मी पड़ रही है तेज जो किरण पड़ रही है खड़े नहीं हो सका था, बहुत तेज घाम पड़ा थे और जे दोपहिया में जब घाम पड़ा थे तो भैया हमें भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना
2: है। और कभी सही
1: यानी कि हम गमछा बांध के जाएं
2: है ना,
1: आंख पे अपा कालो चश्मा लगा लें जिससे आंखें बचाई रहे भैया। और दूसरी बात खा पी के निकले।
2: और कभी पानी ज्यादा पिए रहे हैं।
1: पानी तो भैया बोतल या पाई संग में लेके ही निकले।
2: और कभी ये सही कह रहे हैं।
1: और जहाँ भी मिल जाए जहाँ भी व्यवस्था मिल जाए अपन बोतल को फिर से भर लें
2: और का
1: और पियत रहे पानी
2: सही कह
1: रहे हैं। और जा समय देखो तरबूज

0: रहा है, खरबूजा आ रहा
1: और
0: है,
1: का
0: खीरा आ रहा है,
1: खीरा
0: ककड़ी आ रही है, तो इन सब चीजन को इमली को पना है, आम को
1: आम को
0: पना
1: पना
0: है,
1: है और का पियत रहे हैं और का
0: तो
1: जैसे कहे लू नहीं लगाते हैं
0: हाँ। और प्याज की गांठ अपन
1: अब जेब में रखें
0: रखें भैया, और भैया प्याज भी खात रहे
1: खात रहे हैं और
0: हैं।
1: का
0: तो भैया जन सब चीजन से अपन अगर चलेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे, और जा समय अपन मोड़ा मोड़ी छोटे छोटे हैं उन्हें भैया दोपहिया में ना निकलन दें,
1: और का भैया सही कह
0: सुबह
1: रहे
0: और
1: हैं
0: शाम ही भैया खेलन दें,
1: और का
0: और बुजुर्गों का विशेष ध्यान
1: सही
0: रखें,
1: कह रहे
0: है ना
1: भैया
0: भैया। अब अपन चर्चा को रोकत भाई सुनवाए दो जो संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहना देखो अपन ने संदेश तो सुन लिया
2: और भैया सही कह रहे हैं।
1: और भैया अब अपन बात कर रहे थे पर्यावरण
2: पर्यावरण
1: है ना, तो पर्यावरण में सबसे बड़ो दूषित को काम कर रहा है अपन प्लास्टिक।
2: सही कह रहे भैया
1: है ना, जो प्लास्टिक अपन है ना हर चीज में थैलियां
2: और
1: खाने पानी में जो प्लेट है कटोरियां जो सब चम्मच है जो सब प्लास्टिक की जब खा के और फेंक देते हैं। अब जा समय देखो कितने शादी ब्याह हो रहे
2: और का भैया
1: इतने एक भैया प्लास्टिक को कचरा इकट्ठो होगा वह कि तमाम जो और इन्हें जलाओ तो इसको जो धुआं निकला था वो अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे थे। मतलब जलावो भी दूषित और अपाई फेंक वो भी दूषित। क्यों? क्योंकि ये जमीन में और पानी में बरसों तक गलत नहीं है सड़त नहीं है और जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर रहे
2: हैं
1: है ना। तो ऐसे और पानी में जीवों को ये हानिकारक होते हैं
2: और का
1: तो देखो कितनी एक ज्यादा ये नुकसानदायक है। तो हमें भैया प्लास्टिक को उपयोग थैलियन को उपयोग कम से कम हम थैलियां बाजार से ला रहे हैं साग सब्जी को सामान को परचूनी को सामान ला रहे हैं उन थैलियों में कतई ना लाएं।
2: और का
1: अपन अपाई घर से थैला लेके निकले
2: और का भैया
1: और वो थैला को लेके निकल के अपन थैले में अपन सामान लाएंगे तो भैया जो थैलियन में जो अपन फेंक देते हैं
2: उससे क्या
1: पशु गाय बछड़ा भैंसे जो खा लेते हैं तो पशुओं को भैया इससे क्या हो जाते हैं
2: बीमार
1: हो जाते हैं
2: और
1: भैया मर भी जाते हैं
2: और का भैया तो काय पूरी तरह से जो प्लास्टिक है वो सैकड़न साल तक नष्ट नहीं होता।
1: हाँ।
2: काय का भैया प्लास्टिक कचरा नदियन में समुद्रन में मिलके जल प्रदूषित करत है जो उनसे काय समुद्री जीव जैसे मछलियां हैं कछुआ हैं जाए भोजन के समझ के खा लेते हैं और भैया मर जाते हैं। तो भैया मिट्टी में प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण मिलते हैं वो भूमि के लाने बहुत ही हानिकारक होते हैं। भैया पौधन के विकास को जो प्रभावित सोई करत है।
1: हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं भैया कि इसलिए अपन को जामे अपन को सुरक्षा करके चले
2: और
1: प्लास्टिक को अपन उपयोग ना करें।
2: ना करें।
1: अब अपन चर्चा रोकत भाई सुनवाए दो संदेश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहना अपन ने संदेश तो सुन लाए, अब अपन चौपाल कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा। तो सब भैया बहन काजे धर्मू और
2: मनीषा बहन की राम राम, राम, राम जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहन को धर्म और संग में बैठी मीनाक्षी बहन, आपको भी हमारी राम राम।
5: राम राम भैया।
4: देखो बहना, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे भैया को 60 वर्ष की उम्र के बाद एक तो काम नहीं बनत
5: और कभी है ना,
4: हाथ पांव चल वो कम हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अपनों को मैं यानी कि बुढ़ापा मान लो
5: और कभी है ना, सही कह रहे हैं।
4: तो 60 वर्ष की बात अपन को पैसा की ढेला की जरूरत तो पड़ता ही है
5: और कभी है ना, सही
4: क्योंकि भैया अपन को सामान लाने हैं, कछु चीजें लानी है, कछु दवाइयां लानी है, तो कछु कब में काम के लाने तो पैसा देला की जरूरत पड़ता है। तो अपन काजे पैसा देला कहाँ से आएंगे जब अपन मेहनत नहीं करेंगे?
5: नहीं करेंगे, सही कह रहे भैया।
4: तो जय काजे अपाई लाने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना चला रखी है,
5: और का भैया
4: जो छोटे अपाई सीमांत किसान भैया हैं, जो एक एकड़ है, दो एकड़ जमीन है, तो उन्हें भैया जय योजना बहुत अच्छी चलाई और 18 से 40 वर्ष तक जिन भैया की उम्र है वो जा में शामिल हो
5: सकते हैं ना,
4: कम से कम 18 और अधिकतम 40 वर्ष।
5: 40 वर्ष और का।
4: और जामे अपन को क्या करने हैं कि मासिक योगदान जमा करने हैं, यानी कि भैया 55 रुपया से लेके और 200 रुपया मासिक पेंशन के रूप में अपन को जमा करने, यानी पेंशन जो मिलेगी ना 60 वर्ष के बाद, तो अपन 55 रुपया तो शुरू बात है 18 वर्ष से, ठीक है, और 40 वर्ष के बीच में अगर अपन आ रहे हैं तो बाद में अपन को जमा करने हैं कितने?
5: 200 रुपया।
4: तो भैया अपन को देखने हैं, और जा कोई 60 वर्ष के बाद अपन को हर महीना कैसे मिलेंगे? 3000 रुपया मिलवो शुरू हो जाएंगे,
5: और का भैया,
4: और 3000 मिलवो शुरू हो जाएंगे तो अपन जब तक जीवित हैं
5: और कभी अपने लान मिलत रहेंगे,
4: ठीक है।
5: और
4: अगर भैया किसान भैया कुछ होकर भी गाओ तो भैया पत्नी को मिलेंगे, कितने मिलेंगे? वो आधे मिलेंगे, 1500 रुपया।
5: और का भैया,
4: तो पत्नी को भैया घरेलू खर्च का जो 1500 रुपया हर महीना अपने आप यानी कि बैंक खाता में आएंगे।
5: और का भैया,
4: तो जाके लाने अपन को देखो, अगर कछु है तो अपन पे आधार कार्ड चाहिए और बैंक की पासबुक और जमीन के कागजात
5: चाहिए,
4: जे अपन को सिर्फ अपन को जरूरत है, और जाके साथ अपन आवेदन कर सकते हैं और अपे बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं।
5: सही,
4: किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे अपन कि किसी को अपन मौत आके कि भैया 2 रुपया तू हमें दे।
5: सही कह रहे भैया आप।
4: तो बहना जय योजना को जरूर लाभ लेवे अगर 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में आ रहे हैं जोन भैया, तो भैया वो जय योजना को जरूर लाभ लें। 60 वर्ष के बाद आपको महसूस होगो कि हमने जो योजना में हमने शामिल भाई हते
5: तो देखो अच्छा करो,
4: हाँ आज हम सुकून से किसी के मोहताज तो नहीं है,
5: और कभी है ना, सही कह रहे।
4: तो बहना जय योजना को जरूर लाभ लें। अब अपने भैया को चर्चा को रोकत भाई है ना,
5: और कभी
4: तो अपन अपने भैया को देखो अपन भेंट वार्ता लाउते हैं,
5: और का।
4: तो भैया देखो आज हम जो भेंट वार्ता लाए हैं पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे, जाकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया हम पूर्व में प्रसारित कर चुके हैं, दोबारा आज फिर सुनवा रहे हैं आपकी मांग पर।
6: किसान श्रोताओं नमस्कार। इस कार्यक्रम में जो भेंटवार्ताएं होती हैं उससे मार्ग भी प्रशस्त होता है और हम अपना आर्थिक धनोपार्जन ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि किसान का मुख्य कार्य खेती और करना है, लेकिन अगर हम एक ही तरह के व्यवसाय पर जुड़े रहेंगे तो स्वाभाविक है हमारी आमदनी थोड़ी सी कम होगी। इसके लिए आवश्यकता है कि साइंटिस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, पशु विज्ञान से संबंधित हों, वो जो नित नई खोजें कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए नए मार्गों पर अगर हम चलेंगे तो हम अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों के लिए खेती के साथ एक जो समानांतर व्यवसाय के तौर पर है और जो खेती का ही बिल्कुल पैरलर है, वो है पशुओं का व्यवसाय, यानी कि पशुओं से दुग्ध उत्पादन जो होता है उसे हम बेचकर लाभ ले सकते हैं। पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई बार वो बीमार होते हैं और कई बार बच्चे नहीं हो पाते, यानी कि गाय और भैंस नहीं हो पाते हैं, तो फिर बड़ी समस्या होती है। लेकिन विज्ञान ने नई खोजें की हैं, आज AI का युग है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। तो इस बदलती हुई विज्ञान की तकनीक में अगर हम कुछ नए विज्ञान के साधन इस्तेमाल में लाते हैं तो स्वाभाविक हम अच्छी खेती कर सकते हैं। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा है, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते।
7: नमस्कार
6: डॉक्टर। पहले तो ये बताएं कि वर्तमान में आप कहाँ पर पदस्थ हैं?
7: मैं अभी वर्तमान में ABFO ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में पदस्थ हूँ, BAS के पद पर, पशु चिकित्सा सहायक सलक के पद पर शिवपुरी में पदस्थ हूँ।
6: आज प्राकृतिक रूप से जो गर्भ गाय में और भैंस में होता था उसकी कहीं समस्या आ गई है या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की ओर जानवरों पर आ रहे हैं?
7: जैसे कि बताना चाहूंगा, जैसे प्राकृतिक गर्भाधान होता था उसमें वो भी सही है, लेकिन अभी क्या है उसमें क्या है, अपनी जो देसी गाय है अपन प्राकृतिक कराते तो देसी पशु पैदा होते हैं उनसे, और उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो बहुत कम होता है। और जब कभी किसान भाव अपने पास गाय वैसे बहुत है लेकिन वो देसी है, खिलापन उनको उतना ही रहे, लेकिन जब क्रॉस ब्रीड या AI कराएंगे तो अच्छी नस्ल के सांड्स का बीज प्राप्त करके जब AI कराएंगे तो उनकी जो संतति पैदा होंगी, जो गाय बढ़िया जो पैदा होंगी, उनका दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होगा जो अपनी देसी गायों में नहीं होता था। इसलिए पशुपालक को आर्थिक लाभ होगा क्योंकि खाना उसको उतना ही खिलाना है, पशु को आहार उतना ही देना है, लेकिन दुग्ध उत्पादन उतना नहीं मिलेगा तो उसको उतनी आर्थिक फायदा नहीं होगा। लेकिन जब जो क्रॉस ब्रीड या अच्छी देसी नस्ल की से अपन AI कराएंगे, अच्छे पशु पैदा होंगे, तो उसको आर्थिक लाभ बहुत अधिक होगा, जैसे किसान भाई की आय बढ़ेगी।
6: क्या कृत्रिम गर्भाधान इस तरह का होता है जिसमें हमें मेल जानवर की जरूरत ही नहीं है?
7: अभी पहले जो AI होती थी उसमें क्या होता था कि दोनों तरीके की होता था। जब जनरली आप करोगे कोई भी AI करेंगे या नॉर्मल नेचुरल जो प्राकृतिक गर्भाधान है तो जो सीमेन होता है, जो वीर होता है, उसमें दोनों तरीके के शुक्राणु होते हैं। जो 50% में होगा कि मेल यानी नर पशु पैदा होंगे और 50% मादा पशु पैदा होते थे, लेकिन अभी जो है नई पॉलिसी है इसमें क्या है कि 90% फीमेल पशु यानी मादा पशु पैदा होते हैं। इससे क्या फायदा है कि अपने को जो नर पशु उनकी संख्या कम हो जाती है। अपन जैसा जानते हैं कि आज के परिपक्ष में जो किसान भाई हैं, अब जो पहले तो बैलों से खेती होती थी, आजकल कृषि के क्षेत्र में बैलों का आज नर का उपयोग लगभग बंद हो गया है, इस क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो अगर अपने सेक्सोटिक सीमेन जिसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मादा 90% मादा पैदा होती है, वो बहुत अच्छा है आज के परिपक्ष में, उससे दुग्ध उत्पादन तो बढ़िया है, लेकिन जो नर पशु उनकी संख्या थोड़ी कम हो रही है और जिससे आवारा पशु की संख्या भी कम हो रही है।
6: मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे यहाँ नर पशु पैदा हो?
7: जी आप नहीं चाहेंगे, इसीलिए तो नहीं, इसीलिए सरकार ने पॉलिसी लाई है कि नर पशु नहीं हो, मादा पशु ही ज्यादा पैदा।
6: लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर नर पशु नहीं होंगे तो आपको भविष्य में सीमन भी नहीं मिलेगा।
7: ये आपकी बात सही है, थोड़ा उसमें फर्क, लेकिन जो अपन मैं जो बता रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ, सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिसमें क्या है कि बच्चियां जो पैदा हो रही है ऐसा नहीं है कि 100% ही बच्चियां पैदा होंगी, 10% इसमें नर पैदा होंगे। साथ में ही गवर्नमेंट इस पॉलिसी को पूरी तरह नहीं अपनाया है, जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी इसमें भी है कि प्राकृतिक गर्भाधान जो है उस पर भी ध्यान दे रही है, उसमें भी अच्छे ब्रीड के सांड है वो किसानों को दे रही है।

0: तो उसके साथ में नेचुरल सर्विस भी करवा सकते हैं और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरा ये खत्म हो जाएगा, उसकी संख्या बनी रहेगी, नर भी रहेंगे, लेकिन ज्यादा नर होने से जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल बड़े ज्यादा पशु पैदा हो रहे हैं नर, तो रोडों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, वो खुद किसान क्योंकि उसको खिला रहा है उसको कुछ फायदा उससे नहीं मिल रहा है क्योंकि कृषि से अब उनका नर का यूज करना बंद कर दिया है, तो उससे किसान को खिलाता है फायदा होता नहीं है तो वो उसको रोड पे छोड़ देता है।
1: अब बात आती है कैसे ये कैसे पॉसिबल है, क्या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसकी संभावना कहाँ पर है, शिवपुरी में है या मध्य प्रदेश के हर छोटे छोटे कस्बे में है?
0: जी, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो मध्य प्रदेश है वो जो भारत है उसका दूसरा राज्य है जहाँ पे सेक्स सॉर्टेड सीमेन को व्यापक रूप से यूज किया जा रहा है। 2021 में भोपाल में लैब भदभदा पे लैब स्थापित की गई है, इसमें अपन खुद का यहाँ पे सीमेन सेक्स वाटर सीमेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस सीमेन को मध्य प्रदेश के हर जिले में हर गांव में उपयोग किया जा रहा है। आप निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने पशु की जो सेक्स वाटर सीमेन से AI करवा सकते हैं। शुरुआत में इसमें क्या था कि इसकी जो कीमत थी वो थोड़ा ज्यादा थी, 400-500 रुपए थी, अब गवर्नमेंट पे सब्सिडी भी दे रही है, अब इसका 100 रुपए प्रति डोज आप अपने पशु को करवा सकते हैं और 90% बछिया प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये प्रक्रिया कितनी देर की रहती है या कितने दिनों की रहती है?
0: ये प्रक्रिया में जैसे आप कहें नेचुरल सर्विस की तरह है, बस इसमें अपने को ये देखना है, जब नेचुरल सर्विस होती थी तो अपन अपने पशु जब गर्मी में आता था तो अपन उसको साड़ के पास लेके जाते थे, बस इसमें अब क्या है कि आपका जब पशु गर्मी में आएगा तो आपको उसको साड़ के पास लेके नहीं जाना, निकटतम पशु चिकित्सक या गवर्नमेंट जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने मैत्री गौसेवक बनाए हर पंचायत पे, उनका काम सिर्फ यही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उनसे संपर्क करके आप अपने पशु का नॉर्मल कृत्रिम गर्भाधान यानी जो नॉर्मल गर्भाधान है बछी ब्रीड से वो भी करवा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ बछिया ही चाहिए 90% बछिया जिससे होती है तो आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन से अपने पशु की AI करा सकते हैं।
1: आप जो SSS सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बात कर रहे हैं, इसे क्या हाथों के माध्यम से उसके घर में पहुंचाया जाता है या मशीनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है या किसी जानवर के माध्यम से पहुंचाया जाता है?
0: जी, इस बारे में आपको बताना चाहूँ, जैसे कृत्रिम गर्भाधान आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ मैं, कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड सीमेन को, तो जैसे कोई भी उच्च नस्ल का जो सांड है को अपन रख ले लेंगे और उसका सीमेन कलेक्ट करके कृत्रिम साधनों के माध्यम से, जैसे कृत्रिम साधन की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल गन AI गन जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होती है, उसमें जो सीमेन की स्ट्रॉ है उसको रख करके पशु के सर्विक्स में सीमेन को छोड़ा जाता है, जब पशु गर्मी में रहे तभी छोड़ा, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पर आप पशु की AI करवा सकते, जब आपका पशु गर्मी में आएगा तभी आपकी उसकी AI करा। गर्मी में भी जैसे मान के चलिए आपका पशु सुबह गर्मी में आया, गर्मी के लक्षण पशु में 24 घंटे तक रहते हैं, तो अगर सुबह गर्मी में आया है तो आपको उसकी शाम को AI करानी है, अगर पशु आपका शाम को गर्मी में आया है तो उसकी AI आपको सुबह करवा, जिससे आपको अच्छे चांस से सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपके पशु है जो गर्भधारण उसका हो जाएगा, संभव हो जाएगा।
1: इसकी कोई फीस वगैरह भी निर्धारित है?
0: जी, इसकी फीस निर्धारित है, जैसे मैंने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का जो चार्ज है पहले 450 रुपए, अब गवर्नमेंट ने इसको 100 रुपए कर दिया
1: प्रति डोज। एक जानवर में गर्भधारण की संभावना के लिए कितने डोज दिए जाते हैं?
0: सिर्फ एक डोज ही अपने को देना। जी, अगर सही हीट में है और अच्छा बीर है, जो डालने वाला है जो AI कार्यकर्ता है यानी मैत्री जो गौसेवक है वो ट्रेंड है यानी उसे अच्छे से AI करना आती है, तो बहुत आसानी से सिंपल तरीके से वो AI कर देगा और इसमें चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए।
1: और अगर खुदा ना खास्ता न हो तो अगले माह या कुछ दिनों बाद जब वो पुनः गर्मी पे आया तब दोबारा से प्रोसेस की जा सकती?
0: जी, इसमें ऐसा होता है कि मान के चलो अगर सही से सक्सेसफुल अगर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान है नहीं हुआ है तो गाय की ये साइकिल होती है कि वो 21-22 दिन के बाद फिर से गर्मी में आ जाएगी और आप फिर से उसकी AI करवा।
1: ये शिवपुरी के लगभग हर वेटनरी हॉस्पिटल में ये सुविधा है?
0: हर वेटनरी हॉस्पिटल में सुविधा है और जैसा मैंने बताया था भारत सरकार ने प्रत्येक पंचायत में हर जिले की पंचायत में कृत्रिम जो मैत्री गौसेवक है उनको बनाया है, उनका यही काम है कि उनको कृत्रिम गर्भाधान और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और टीकाकरण के लिए मुख्य रूप से बनाया है, वो ये काम करते हैं।
1: यानी उनके पास सामान स्टोर के तौर पर है?
0: जी, उनको जो जब AI होती है ट्रेनिंग हम देते हैं उसके बाद उनको पूरा सामान हम देते हैं, साथ में जब उनको सीमेन जो लेना होता है वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके वहां से लेके और AI कर सकते।
1: तो उसको रखने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था होती होगी?
0: जी,
1: कि खुले में किसी भी
0: बोतल नहीं, ऐसा नहीं रख सकते उसको, जैसे अस्पताल में रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं जिसको LN2 बोलते हैं, इसको जो सीमेन को जो स्टोर करते हैं बहुत लो टेम्परेचर पर करते हैं क्योंकि इसको अपने को बहुत लंबे समय तक रखना होता है,
1: ठंडा रखते हैं,
0: बहुत ठंडा रखना पड़ता है, इसका टेम्परेचर आप देखोगे तो -196°C होता है यानी बहुत ज्यादा ठंडा, बर्फ तो कुछ नहीं है यानी बहुत अधिक ठंडे पे इसको रखते हैं, इसको फिर जब अपन AI करते हैं तब अपने उस कंटेनर से निकाल लेते हैं और पानी में जो रहता है पानी में डालते हैं 30 सेकंड के लिए 37°C पर, तो उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं जो हिमरत हो गए मतलब उनका बर्फ के रूप में जम गए हैं वो नेचुरल अपनी कंडीशन में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फिर अपन उससे AI करते हैं और सक्सेस AI उससे हो। हो जाए।
1: इस तरह की प्रक्रिया के बाद गर्भाधान ग्रहण करना किसी जानवर का और एक सामान्य प्रक्रिया में गर्भधारण करना किसी जानवर का, AI के माध्यम से जब गर्भधारण हमारा जानवर करता है और सामान्य रूप से करता है, तो इन दोनों में जानवर की आगे कुछ देखरेख कुछ अलग तरह की होती है?
0: नहीं, देखरेख दोनों में अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका लगता है कि पशु का जैसे आपने AI करा लिया, कृत्रिम गर्भाधान जैसे करा लिया, या आपने प्राकृतिक गर्भाधान करा लिया, उसके 3 महीने के बाद उसको आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बोलते हैं, मतलब बच्चे चेक

0: आना है कि आपका पशु गर्भित हुआ है कि नहीं है, और उसके बाद अगर वो गर्भित हो गया है तो आप उसके लिए खुराक जैसे पशु ब्यावन पशु की जो देखभाल करनी है उस तरीके से उसकी सेम देखभाल करनी, अलग से ऐसा नहीं है कि अगर ये अपने कृत्रिम गर्भाधान कराया है तो उसकी अलग से देखभाल करनी है, प्राकृतिक कराया है तो अलग से।
1: जैसे इंसान के लिए कि भाई अगर कोई बीमार है तो उसके लिए बेड रेस्ट है तो उस जानवर को पूरी तरह से घर में रखना है, बाहर नहीं निकलने देना है, इस तरह की सावधानी का कोई अलग से हमें ध्यान नहीं रखना?
0: नहीं नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आपको जो प्राकृतिक गर्भाधान है उसी तरीके से आप नेचुरल जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके पशु को भी ऐसे ही रख सकते।
1: और बाद में जैसे अगर वो कंफर्म हो जाता है तो फिर उसकी डाइट जैसे धीरे धीरे इंसानों में बढ़ाई जाती है कि हाँ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको भाई कि हाँ। बच्चे के हिसाब से खुराक दी जाती है तो जानवर को भी उसी बच्चे के हिसाब से खुराक?
0: हाँ, वो ध्यान देना जरूरी है, वो तो आप प्राकृतिक कराओगे तब भी देना पड़ेगा, पशु प्रेग्नेंट है उसके अलग अच्छा दुग्ध उत्पादन उसको अगले आपको लेना है, जब वो ब्याएगी तो उसकी खुराक का ध्यान तो आपको रखने का, बच्चे का जो पेट में बच्चा है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना।
1: इस प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुए बच्चा और उस बच्चे का भविष्य में एआई के द्वारा किया गया पुनः कृत्रिम गर्भाधान, उसके पश्चात जो संतति पैदा होगी तो क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी?
0: हाँ, जिस बारे में अगर बताना चाहूँ, जैसे मान के चलिए आपने शुरुआत में आपके पास नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है, जो मतलब ऐसी ब्रीड है जो इसका दुग्ध उत्पादन बहुत कम है, तो आपने पहली बार उसकी एआई करा दी तो जो नया बच्चा पैदा होगा उसमें दोनों तरीके के लक्षण, 50% देसी जो गाय है आपके उसके लक्षण आएंगे और जिससे ब्रीड से आपने एआई करवाई है 50% लक्षण उसके आएंगे। लेकिन जब दूसरी बार आप उसकी फिर से कराओगे तो यानी इसके जो देसी वाले थे उसके लक्षण अगले में हो जाएंगे और नया आप जो कराओगे फिर जिस क्रॉस ब्रीड से आप कराओगे तो फिर लक्षण और बढ़ते चले जाएंगे।
1: तो धीरे धीरे दो या तीन पीढ़ी के पश्चात ये परसेंटेज 100 में बदल सकता है?
0: ये 6 से 7 पीढ़ी के बाद 90% तक, 98-97% तक ये चला जाता है। लेकिन अपने को बहुत ज्यादा ऐसे देसी ब्रीड है का अगर करना चाहते हैं, मतलब जो इंडिजिनस ब्रीड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर की ब्रीड है जैसे जर्सी है, एचएफ है, इनसे आप कराएंगे तो क्या होगा, जब प्योर की तरफ ये चली जाएंगी तो इनकी जैसे अपन जानते हैं कि ठंडे देशों की गायें होती हैं, अब यहाँ पे उनको आप एकदम प्योर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ उनका थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल होगा, बीमार जल्दी हो सकती है।
1: दक्षिण भारत में एक गाय है जिसका साइज बहुत कम होता है, वो गाय के बारे में बताया जाता है कि उसका दूध बहुत महंगा बिकता है, दूध ज्यादा तो नहीं होता लेकिन उसकी रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेडिकेटेड दूध है, तो उस तरह की संतति से उसके मेल वर्जन से अगर यहाँ दुग्ध उत्पादन के लिए काम किया जाए तो क्या वो संभावना है?
0: ये ऐसी भ्रांति है, ऐसा दूध उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, जैसे देसी ब्रीड है उनका बताते हैं कि अपन A2 मिल्क है वो थोड़ा अच्छा होता है जो बाहर की क्रॉस ब्रीड होती है, लेकिन जो देसी ब्रीड उनका दूध लगभग जैसे गिर की आप बात कर रहे हो, गिर का दूध अच्छा होता है, ये दक्षिण भारत की नहीं है पूरे इंडिया में इस टाइम पे है जो गिर ब्रीड आप जो कह रहे हैं इसका दुग्ध अच्छा होता है। A2 ब्रीड जो जिनको हम अपन बोलते हैं जैसे अपनी जो देसी गाय है इंडिजिनस के सर पे जो पीठ की तरफ जो कुंवर जैसा होता है तो अपन मानते हैं कि इससे सूर्य की किरणों को जैसे अवशोषित करके A2 मिल्क अच्छा मिल्क जो उसमें क्वालिटी होती है वो सभी देसी गाय में अपने को होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी गिर गाय में।
1: अभी जितनी हमारी बातचीत हुई ये बातचीत गाय के लिए हो रही है कि भैंस के लिए भी ये प्रक्रिया है?
0: ये दोनों में लागू है, लेकिन जब आपने दूध की बात करी तो गाय की अपन बात कर रहे हैं A2 A1 मिल्क की, ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन या कृत्रिम गर्भाधान जिसकी अपन बात कर रहे हैं दोनों के लिए है, दोनों में ये चल रहा है, भैंसों में भी आप पढ़िए पढ़िया प्राप्त कर सकते हैं 90% पढ़िए पढ़िया, मुर्रा जो सीमेन है भी MP में अवेलेबल है मध्य प्रदेश में, उससे आप 90% पढ़िए पढ़िया प्राप्त कर सकते हैं, पढ़े बहुत कम हो जाएंगे 10% पढ़े ही पैदा।
1: बातचीत तो हुई, कई सारी बातें हमने जानी, किसी विशेष बिंदु पर आप बताना चाहें कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये इस तरह से पॉसिबल है?
0: इसमें 2-3 चीजों का मैं आपको बताना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुपालक भाई को अगर सक्सेसफुल मतलब अच्छा कृत्रिम गर्भाधान का वो फायदा लेना चाहते हैं। एक तो ये है कि उनमें पशुपालक का कोई कंट्रोल नहीं है कि सीमेन कैसा है, गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, लेकिन अपन जैसे पशुपालक को इसको हीट को पहचानना बहुत जरूरी है, हीट को अगर वो अच्छे से टाइम पे पहचान लेंगे तो उनकी एआई में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर हीट अपन को सही से नहीं पहचान पाए टाइम पे अगर उसकी अपने एआई नहीं करा पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम पे एआई नहीं कराएंगे तो एआई सक्सेसफुल नहीं होगी। और पशुपालक भाई को हीट के लक्षण भी पहचानना आना चाहिए, जैसे गाय है गाय तो बहुत अच्छे लक्षण दिखाती है हीट के, लेकिन भैंस क्या है जनरली साइलेंट हीट में आती है वो अपने लक्षण नहीं दिखाती है, गाय में क्या लक्षण आएंगे वो भी पशुपालक भाई को आना चाहिए, जैसे जब गाय गर्मी में आएगी तो उसके जो योनि मार्ग से है पारदर्शी पदार्थ निकलता है, गाय बार बार रमाती है बार बार पेशाब करती है, जब उसको गर्मी में आएगी तो शुरुआती गर्मी में वो अन्य पशु के ऊपर चढ़ती है, लेकिन जैसे ही गर्मी के लक्षण बढ़ते जाएंगे अन्य पशु को अपने ऊपर चढ़ने देगी, इसे स्टैंडिंग हीट कहते हैं, ये सबसे अच्छा लक्षण है, इसलिए बोलते हैं कि जब एआई के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं हीट के लक्षण, तो सुबह अगर पशु गर्मी में आया तो अपन उसकी शाम को एआई कराते हैं, शाम को आया है तो सुबह कराते हैं कि जैसे ओवुलेशन सही टाइम पे हो और अपने जो शुक्राणु जो वीर डाला इसमें जो शुक्राणु है उनका अंडाणु से सही से निषेचन हो और सक्सेसफुल कृत्रिम गर्भाधान हो सके।
1: तो डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी, आप हमारे किसान भाइयों के बीच में आए और किसानों को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे, इस एक विषय पर आपने जानकारी दी। दी, उसमें साथ ही साथ आपने SSS यानी कि सेक्स सॉर्टेड सीमन इस बारे में
0: लिंग वर्गीकृत वीर्य जी,
1: इसके बारे में ही बताया कि पशु अगर इस तरह से अपने जानवर को गर्भ की ओर ले जाते हैं तो संभावनाएं बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट अच्छे होते हैं और दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसानों का पशुओं से सिर्फ यही सबसे पहला और लाभ है कि उन्हें दुग्ध ज्यादा मिलता है और उसके संग सपोर्टिंग पदार्थ यानी कि गौमूत्र और गोबर वो भी आज

0: यानी उनने हमें डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी
1: विस्तार से जानकारी दी और बिल्कुल एक एक चीज बताई उनने हमें। अगर हमसे कहीं कोई अगर गलती हो रही होगी तो अब नहीं होगी, है ना। तो भैया देखो, जिस समय समय पे हम इसलिए ऐसी भेंट वार्ताएं सुनवाते रहते हैं जिनसे कि भैयाओं के दिमाग में फिर से वो चीज आ जाए, है ना। हाँ, क्योंकि अपन कई बार सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं,
0: सही कह।
1: तो भैया फिर अपन दोबारा सुन लेते हैं तो फिर वो अपन को याद हो जाते हैं कि अपन को ऐसे नहीं ऐसे करने हैं,
0: और
1: पशुओं की देख रेख कैसे रखनी है, कैसे क्या करने हैं। तो वो सब चीजें विस्तार से जब कोई अपन समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो अपन उस हिसाब से अपन काम करते
0: हैं,
1: है ना। तो बहना देखो, अपन ने देखो चर्चा भी कर ली, अपन ने भेंट वार्ता भी सुनवा दी,
0: और भैया को मनोरंजन सुई करवाए दे।
1: हाँ, करवाए दो अपन को, प्यारों से लोकगीत सुनवाए दो, जिससे हमारे भैया सुन के आनंद ले।
0: और का भैया देखो, जाके गायक कलाकार हैं द्वारका प्रसाद कुशवाहा, तो भैया सुनाते हैं जी लोकगीत।

0: तो बहना देखो अपन ने लोकगीत तो सुन लो है ना,
1: और कभी
0: और भैया और देखो जाएगा हो तो द्वारका प्रसाद कुशवाहा में
1: और कभी।
0: अब बहना देखो अपन बात करें अपन खेती बाड़ी के संगे संगे अपन जा समय भैया अपन खो का करने हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो जा में अपन खो बहुत कछु सोच के चलने
1: हैं। और
0: जैसे कि अपन है ना इस समय गहरी जुताई
1: कर सकते हैं और
0: है ना, क्योंकि गहरी जुताई करवे से अपन को कई लाभ मिलते हैं
1: और कभी।
0: एक तो नीचे से ऊपर की मिट्टी, ऊपर की नीचे मिट्टी
1: हो जाते हैं,
0: उसमें जो भी कीटाणु दूषित कीड़े मकोड़े जो भी अपने हानिकारक जो अपने जमीन में होते हैं भूमि में
1: वो जाते हैं।
0: हाँ जब घाम पड़त है तेज तो वो नष्ट हो जाते हैं और नीचे तक वो घाम पड़वे से गर्म आठ वो नीचे जमीन तक
1: पहुंच
0: जाते हैं, तभी वो गहरी जुताई बताई
1: और कभी।
0: और दूसरी बात अपने जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाओ थे,
1: और जब बरसात होता है तो पानी बरसाता है तो मिट्टी भुरभुरी हो
0: जाती है। हाँ मिट्टी भुरभुरी हो जाते तो उससे क्या होता है उपजाऊ हो जाते हैं और अपनी जो फसल होता है बाकी जड़ें वो नीचे तक चली जाते हैं।
1: सही
0: तो बा में फसल को उत्पादन
1: बढ़ाते हैं। सही कह रहे हैं भैया, जैसे गहरी जुताई बहुत ही लाभ।
0: हाँ तो ये हर 3 साल में अपन को करनी चाहिए।
1: सही कह रहे हैं,
0: तो जोन भैया ने अगर नहीं करी है तो 3 साल हो चुके हैं जिनके, तो भैया वो इस समय अपनी गहरी जुताई कर सकते हैं और वो लाभ ले सकते हैं।
1: और भैया मिट्टी परीक्षण भी अपने भैया करा सकते
0: हैं, मिट्टी परीक्षण भी यहाँ करा सकते हैं। जा समय मिट्टी परीक्षण को भैया अलग अलग जगह से मेड़ से नहीं लेने, अलग अलग देर से अगर और कहीं अगर ढेर लग रहा होगा तो भासे ना लें
1: और
0: है ना, मेड़ के ऊपर से ना लें, हर कोने से हर बीच में से चारों तरफ से मिट्टी को नीचे से थोड़ो थोड़ो खोद के अपन इकट्ठी कर लें
1: और
0: एक थैलिया में पैक करके बाय अपन बापे लिख दें
1: और कभी
0: कि जे खेत पे को रकबा नंबर वगैरह सब अपनी पहचान लिख के और फिर अपन भेज सकते हैं। तो बहना अब अपने कार्यक्रम किसान वाणी को समाप्त हो रहा है
1: और कभी
0: तो सब भैया बहनन का जय धर्मु और
1: मनीषा बहन की राम राम
0: जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसान

0: समाधान।
1: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
0: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
3: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देवाशीष

0: प्रूस्टी, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: हम शुरू करना चाहेंगे देवाशीष जी आपसे. 11 वर्ष हो रहे हैं तीन योजनाओं को, जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना. इससे आप कैसे देखते हैं भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को, यह कैसे मजबूत कर रहा है, और पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी?
2: आज 11वां सालगिरह है. दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है, जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है. इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनकी वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं. जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है. इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों की जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस के तमाम शाखाएं, ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं. तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है. और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है. मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा. अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं. और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 10,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है. और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3,600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है. और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है. का मतलब है कि अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है. यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है.
0: हम इसके पूर्व अगर हम आपके पास आएं और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं. तो इसके मद्देनजर अटल पेंशन योजना, जहां तक हम समझते हैं, इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है. और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में. तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
1: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है. जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है. और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते.
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं. तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी, और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 30% हो जाएगी और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे. और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा. इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9,06,00,000 लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक, तो आपको 1,000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो तीन बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम दो बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा तीसरा बच्चा है और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये दो बच्चे तो रहेंगे आपके साथ पर उन पे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये तीसरा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
0: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, कि क्या कोई जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई है आयु की है?
1: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, तो इसलिए 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते।
0: जी देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में उन्हें ट्रस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2,00,000 रुपए तक का है, और जो बीमित व्यक्ति है इंश्योर्ड है उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2,00,000 रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस से ऑटो डेबिट किया जाता है, उनको बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस वित्तीय वर्ष में बचते हैं उनका प्रीमियम देना होगा। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं, और इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए के जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी हैं लगभग 17 करोड़ हैं, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ 70 लाख है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और

0: समावेशिता
1: जी
0: और
1: जी
0: आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जुड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के यहाँ, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
0: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट है, सेविंग बैंक पासबुक है। और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर कोई पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में ₹2 लाख, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में तो उनमें ₹1 लाख का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल के ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खाते धारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर ₹3600 करोड़ के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। यहाँ तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं, और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
1: जी, हम इसका पूरा आपके पास हम आना चाहेंगे। ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से, और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में, और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखती हैं इन योजनाओं का विस्तार, और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हो तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गिग वर्कर्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है, और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं। और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी, 8-8.5% की ग्रोथ उस पे 9% की हो रही है, और भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सो AUM भी बढ़ेगा। सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं। दूसरा जो ये AUM एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का। और इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
2: आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। उदित नारायण के सुर में सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत। पापा कहते हैं फिल्म के गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में सुनिए जुर्म फिल्म का गीत। इंडिवर के गीत में आवाज कुमार सानू और साधना सरगम।

अगला गीत फिल्म एतबार से, गायक स्वर आशा भोसले और भूपिंदर के, शब्द संयोजन हसन कमाल का और संगीत बप्पी।

कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है छोटे से अंतराल का।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

0: जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, VC के, IUML और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV systems.

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में

एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडो पंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले। लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधि भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक

0: विविधता दिवस है और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
1: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
2: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
2: ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
2: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
3: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया क्योंकि ये माना गया कि ये फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में हैं और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसल वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप हैं जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।

0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
1: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
2: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
3: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
3: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
5: मेरा नाम सीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है, मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी 2 अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं।

0: हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ मैं, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के

0: और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज हैं, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद है।

0: बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
2: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
2: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया। इसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग आभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।